एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

0: टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

मनुष्य जीवन का सार है चरित्र। यदि जीवन में सफलता की कामना है, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने की अभिलाषा और आत्मज्ञान प्राप्त करने की लगन है, तो निष्कलंक चरित्र का उपार्जन कीजिए। मनुष्य का चरित्र मात्र ही सदा जीवित रहता है और मनुष्य को जीवित रखता है। संकल्प, रुचि, ध्यान और श्रद्धा के द्वारा चरित्र निर्माण किया जा सकता है। ये एक शक्तिशाली उपकरण, सुरभिपूर्ण पुष्प और शक्ति का ही पर्याय है। चरित्र निर्माण से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है।

ये हमारा जीवन प्रभु से मिला उपहार है, इसे सत्कर्म में लगाने से ही इसे सफल माना जा सकता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। भगवान का नाम सुमरण करने से कभी भी न खत्म होने वाला सुख प्राप्त होता है।

यदि प्रेम आ जाए तो जितने जप तप दान पुण्य तीर्थ मूर्ति मंदिर आदि सभी क्रियाएं उस प्रेम पर न्योछावर की जा सकती हैं। इनमें से कोई भी वस्तु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

वन गमन के लिए श्रीराम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधू की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहु को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्रीराम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

104 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम में आज विशेष के अलावा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, आज की खबर और मौसम की जानकारी साझा की जाएगी। 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग गाने सुहाने, ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 पर। सुबह 9:00 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि, जिसमें आज का विषय है चिट्ठियों का वो जमाना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां सुनिएगा सुबह 10:00। 10:30 पर होगा कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:05 पर आज आप सुनेंगे गूंज पहाड़ों की। 11:30 पर आपको सुनवाएंगे जय हिंद गीतमाला। 12:00 के लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 12:00। 12:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा सुनो सखी। दिन में 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। भजन आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर। शाम 5:25 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। आज सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो जीनियस। शाम 6:06 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजा गराएं दिया ये कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। इसमें जानकारी दी जाएगी कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग। किसान वाणी कार्यक्रम किसान भाई सुनेंगे 7:10 पर। इसमें भेंट वार्ता के साथ साथ सब्जी मंडी के भाव भी बताए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस देशगान 8:30 पर। रात 9:15 पर हिम दर्शन कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 10:00 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रातः 9:20 पर, सुबह 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और सभा के अंत में 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः सायंकाले पंजाबस्य जालंधर नगरात् आभासीय माध्यमेन देशस्य विंशति राज्येषु पुनर्विकसितानां पंचसप्तति रेलस्थानकानां उद्घाटनम् अकरोत्। एतेषां स्थानकानां अमृत भारत स्थानक योजनायाः अंतर्गतम् आधुनिकीकरणं जातम्। एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानक पुनर्विकास योजनासु अन्यतमा अस्ति। प्रायः 70.5 लाख कोटि रूप्यकाणां व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्रिसौविध्यैः समलंकृतानि सन्ति। पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पंजाबस्य जालंधर कैंट SAS नगरम, श्री मुक्तसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति। तद् अतिरिक्तं गुजरात, ओडिशा, दक्षिण रेल क्षेत्राणां अनेकानि स्थानकानि अपि अत्र सम्मिलितानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री करटोली अंबाला रेल सेवां, अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस चेत्येताभ्यां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। ह्यः जालंधरे प्रधानमंत्रिणा लोकार्पितानि राष्ट्राय समर्पितानि च एतानि पुनर्विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचना परियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70.5 लाख अस्ति। अवसरेस्मिन् प्रधानमंत्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसित रेलस्थानकानां उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत्, तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वाह्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति। अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेश मंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार, निवेश, अंकिकीय परिवर्तन, साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्शः कृतः। अनन्तरं साक्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मन्त्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबंगाल राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुडी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुडी नगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री PV सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय संजय मट्टू।

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार, रिम झिम सुबह में सुबह सुहानी कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त संगीता, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का आगाज सुविचार के साथ। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एक बड़े पहाड़ को चढ़ने के बाद व्यक्ति को ये पता चलता है कि चढ़ने के लिए ऐसे और पहाड़ बाकी हैं, यानी जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, पर हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। श्रोताओं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि हर दिन छोटे छोटे अनुशासित कदमों का परिणाम होती है। तो यदि आप आज खुद को अनुशासित करने का निर्णय लेते हैं, तो आने वाला कल अपने आप बेहतरीन हो जाएगा।

0: अरे पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल लल्ला
1: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, आज 18 जुलाई है और 18 जुलाई का दिन इतिहास के पन्नों पर अपनी खास और विशेष जगह रखता है। तो अब नजर डालेंगे आज विशेष पर। इतिहास के पन्नों पर 18 जुलाई का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को मंजूरी दी गई थी और इसी अधिनियम ने भारत के विभाजन और 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी की नींव रखी थी। भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 आज ही के दिन 1980 में लॉन्च किया था। इसके जरिए रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था, जिससे भारत अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला दुनिया का 6th देश बन गया था। 1980 में आज ही के दिन टेलीविजन का रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। भारत में मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, वहां से पहली बार टेलीविजन का रंगीन प्रसारण किया गया था। जिन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बनी गांगुली का जन्म 1861 में हुआ था। वे चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षित होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी। प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का जन्म 1927 में आज ही के दिन हुआ था और हिंदी सिनेमा की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का जन्म भी आज ही के दिन 1982 में हुआ था। जानकारियां आपके साथ और भी साझा करेंगे इस गीत के बाद।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी। सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: सुबह सुहानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल 18 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, भारत रत्न से सम्मानित और रंग भेद विरोधी आंदोलन के महानायक नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने नवंबर 2009 में आधिकारिक तौर पर इस दिवस की घोषणा की थी। इस दिन नेल्सन मंडेला के संघर्षों को याद किया जाता है और दुनिया भर के लोगों को अपने समाज और समुदाय को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये दिन याद दिलाता है कि हर व्यक्ति में दुनिया को बदलने की ताकत होती है। नेल्सन मंडेला ने मानव अधिकारों, समानता और शांति के लिए अपने जीवन के 67 साल समर्पित किए थे। इसीलिए इस दिन दुनिया भर के लोगों से अपील की जाती है कि वे अपने समय के कम 67 मिनट किसी सामाजिक या सामुदायिक सेवा में लगाएं, जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, अपने आसपास सफाई अभियान चलाना, पौधारोपण करना, बच्चों को पढ़ाना या बुजुर्गों की देखभाल करना। 1990 में मंडेला को भारत रत्न मिला था और भारत रत्न पाने वाले वे पहले विदेशी थे। साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना की, जो हर 5 साल में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला की जयंती पर उन्हें शत शत नमन।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को हुआ था, जिन्हें प्यार से उनके चाहने वाले काका कहते थे। लंबी बीमारी के बाद 69 वर्ष की आयु में उनका निधन मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1969 से 1971 के बीच लगातार 15 सोलो हिट फिल्म देने का एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया था जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। आराधना आनंद, कटी पतंग, सच्चा झूठा, दो रास्ते जैसी फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय को हम सभी याद करते हैं और ये उनकी मुख्य फिल्में हैं। कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत साल 2013 में पद्म भूषण से नवाजा था। वे आज भी अपने गानों और फिल्मों के जरिए लाखों दिलों में जिंदा हैं।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब नजर आज की खबर और मौसम की जानकारी पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अमृत भारत योजना के तहत भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इससे हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया। इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने डिजाइन और विकसित किया। सोनम वांगचुक का दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन जारी है। अब खबरें हिमाचल प्रदेश से। पवित्र मणि महेश यात्रा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक चलेगी। 30 रुपए बढ़ा पंजीकरण शुल्क। हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू होगी। 1 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण और हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगी। राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार पशु मित्र की भर्ती करेगी। इसमें 4 घंटे काम के लिए 5,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सहकारी बैंक की सभी डिजिटल सेवाएं 18 से 22 जुलाई तक बंद रहेंगी। इस कारण UPI और ATM सब बंद रहेगा और ऑनलाइन लेन देन भी नहीं हो सकेगा। मौसम की जानकारी। हिमाचल में सक्रिय होगा मॉनसून। कई जिलों में 6 दिनों तक भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से कमजोर चल रहा मॉनसून फिर सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश होने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 18 से 23 जुलाई के दौरान मॉनसून के सक्रिय रहने के आसार हैं।

0: इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: सुबह सुहानी।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएगी।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार,

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हाटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और

0: तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में। जब मैं लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
7: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
8: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls probe. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
10: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है
9: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service from Jind Railway Station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat Railway Stations and cover the 89-kilometre distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jumagach in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Home Minister will chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. More from our correspondent.
11: Union Home Minister Amit Shah arrived at Bagdogra last night on a three-day visit to West Bengal. Today he will visit two border security force camps in North Bengal and address a Prohori Shambelan. He is also scheduled to hold a series of meetings at Uttarakhand on issues concerning the border areas of North Bengal. Chief Minister Shubhendu Adhikari and senior state government officials are likely to attend the meetings. Mr. Shah will travel to Kolkata this evening. Tomorrow, the Union Home Minister will review the law and order situation in the state at a meeting with senior Polish officials. He is also scheduled to attend a function at National Library and participate in the foundation stone laying ceremony of the Amul Dairy Plant at Dhulagarh from the Bishwa Bangla Convention Center. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
9: Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis will jointly lay the foundation stone for three major national highway projects worth over 16,700 crore rupees in Pune today. The projects are expected to enhance connectivity, reduce travel time and traffic congestion, and boost industrial and economic growth in the Pune region. The projects will be implemented under the Design, Finance, Build, Operate and Transfer model, with a 29-year concession period and are scheduled for completion within 4 years. Skyroot Aerospace is set to undertake the maiden orbital launch of Vikram 1, India's first privately developed launch vehicle, this morning. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi described the mission as a historic new chapter in India's space journey. He noted that the four-stage rocket has been designed to provide rapid and on-demand launch services. The Prime Minister said the mission reflects the talent, determination and entrepreneurial spirit of the country's youth, while showcasing how India's space sector reforms are unlocking new opportunities for innovation.

किशोर कुमार की आवाज में अभी श्रोता सुन रहे थे। इस गीत की धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर सजा हुआ अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म है मैं आशिक हूँ बहारों का, और ये गीत भी राजेश खन्ना पर फिल्माया गया है।

राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था और इनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। आराधना, आनंद, कटी पतंग, सच्चा झूठा, दो रास्ते और रोटी उनकी बेहतरीन फिल्में थी। सुनते हैं ये गीत रोटी फिल्म से।

0: सप्ताह की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ नेक्सा, अपग्रेड विद एक्सक्लूसिव ऑफर्स अक्रॉस द नेक्सा रेंज।
2: दिस मॉनसून सीजन मेक एवरी ड्राइव फील स्मूदर एंड एवरी जर्नी स्पेशल।
1: प्रेजेंटिंग द बोल्ड बलिनो, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी।
2: इक्विप्ड विद फीचर्स लाइक अ 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले एंड अ सेफ्टी थ्रू 6 एयरबैग्स।
1: एंड नाउ इट्स योर्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ जस्ट ₹5.59 lakh। यस, ₹5.59 lakh, वैलिड टिल 31st जुलाई only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today. TNC apply.
3: Nexa.
4: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दो रास्ते फिल्म का ये गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
8: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना द्वारा अभिनीत फिल्मों से गीत। राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को हुआ था। कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत साल 2013 में पद्म भूषण से नवाजा था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों और फिल्मों के जरिए लाखों दिलों में जिंदा हैं।

इसी के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ...103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं और लीजिए अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं नमस्कार, तारीख हो चुकी है आज 18 जुलाई और दिन है शनिवार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इस रिमझिम वाले बरसात के मौसम में चाय की प्याली हाथ में होगी और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल। जी हाँ दोस्तों, आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त संगीता और लेकर आई हूँ सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि, जहाँ होती हैं ढेर सारी बातें और साथ ही होते हैं मधुर प्यारे गीत। और श्रोताओं किस टॉपिक पर आपसे बात होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। टेलीफोन नंबर है 01892224391। और श्रोताओं इस प्रोग्राम को आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और टॉपिक कौन सा होगा ये आपको हम बताएंगे इस गीत के बाद, यानी कि इस गीत को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम किस बारे में आपसे बात करेंगे।

0: FM के इस सुरीले बातों और जज्बातों से भरे सफर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज हम वक्त के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटने वाले हैं। चलते हैं उस दौर में जहां बातों की रफ्तार WhatsApp के डबल टिक से नहीं बल्कि डाकिया भैया की साइकिल की घंटी से तय होती थी। जी हां, आज हम बात करेंगे आपसे चिट्ठियों के उस हसीन दौर की। तो हमारे श्रोता, अगर आप सब भी उस दौर में पहुंच गए हों तो हमारे साथ अपनी बातें अपनी यादें साझा कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01892224391। प्रोग्राम है सजीव फोन इन गीतांजलि और मैं हूं संगीता, रहूंगी आपके साथ 10 बजे तक। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: अजय गुप्ता सिद्धबाड़ी से बोल रहा हूँ।
0: जी गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद जी।
0: जी बताइए, चिट्ठियों के उस दौर की बातें जो आपको याद हैं।
1: हमारी दौर तो हमारे टाइम में तो बैठे का पोस्ट कार्ड होते थे पहले
0: जी,
1: और उसी में चिट्ठी लिखते थे। वो दूसरा बैरी लिफाफा होता था, चिट्ठी लिखते थे, लेकिन वो टाइम लग जाता था, समय लग जाता था। आज चिट्ठी देखो तो हफ्ते बाद मिलनी है
0: जी,
1: और जो टेलीग्राम होती थी वो भी पोस्ट ऑफिस जाके करनी पड़ती थी।
0: अच्छा, आपने बैरंग लिफाफे की बात की, तो बैरंग लिफाफा उसे बोला जाता था जिस पे हम टिकट नहीं लगाते थे, वो पोस्टल स्टैंप जो होती थी, टिकट जो होती थी। जी
1: जी जी जी
0: जी, कई बार, हाँ कई बार वो हमें मिलती नहीं थी पोस्ट ऑफिस में जाकर, तो कई बार हम वैसे ही
1: मिलता था। जी
0: जी, तो वो जो चिट्ठी थी

0: वो जल्दी पहुंचती थी या लेट?
1: लेट पहुंचती थी मैडम जी, एक तो सुविधा कोई नहीं थी ना उस टाइम
0: जी,
1: आज डाक डालो तो कल वो पैक होगी, उसके दिन दूसरे दिन बस नहीं जाएगी, आगे पहुंचेगी फिर डिलीवर करेगा डाक या लेट हो जाते थे जी।
0: जी आपको अपना कोई खत जो आपके पास आया हो और याद हो आपको उसके बारे में बताइए कुछ बात।
1: अरे पास हमारे कोई रिश्तेदार की डेथ हो गई थी जी, वो पोस्ट कार्ड को कार्ड ही डालते थे पहले
0: जी,
1: कार्ड ही डालते थे
0: जी,
1: उन्होंने कार्ड डाला वो फलाना जो सुजानपुर में रहते थे
0: जी,
1: तो हमें वो मिला को 10 दिन के बाद जी
0: जी,
1: पैन फोन की सुबह भी नहीं होती थी
0: जी जी जी,
1: वो कार्ड मेरा वो लेट हो गया थी उस टाइम जी, वो मेरे को याद है अभी तक, छोटे छोटे से हम हमारे माता पिता जी ये थे
0: जी, बहुत
1: की बात
0: जी, आप समय पर नहीं पहुंच पाए इसका आपको दुख है
1: जी, पहुंचाते थे समय नहीं लगता सर
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: आजकल तो सभी
0: आजकल तो बिल्कुल जी, एक क्लिक पर आप बात कर सकते हैं, आपको पता लग जाता है, मैसेज पता लग जाता है, कोई हमारे घर में गेस्ट आए उसके पहले ही हमें पता होता था कि वो आने वाला है, नहीं तो कई बार कौवा जो है वो संदेशा देता था।
1: आजकल दूसरे दे देते हैं घर में डेथ हो गया, दूसरे एकदम बता देते हैं आपको ये
0: जी, बिल्कुल
1: सुविधा कोई नहीं होती थी
0: जी। चलिए जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने साझा की और दुखद भी घटनाएं होती रहती हैं जो सदा याद रहती हैं, तो आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी, आप भी इनकी तरह अपनी बातें अपनी यादें हमारे साथ साझा कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 01892224391। अगली कॉल हम लेंगे इस ब्रेक के बाद।
2: Drive home your favorite.

0: Smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your throngs today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो
4: हेलो संगीता जी, नमस्कार।
3: नमस्ते जी, और अपना नाम बताइए और आज के विषय के बारे में भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं अपनी यादें।
4: हाँ जी, मैं करूँगा, सब कुछ करूँगा जी, सब कुछ यादें ताजा करूँगा
3: जी।
4: पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं बोल रहा हूँ जी पंजाब के जिला होशियारपुर तहसील मुकेरिया के गांव मैतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
3: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: देखिए संगीता जी, बात चिट्ठियों की हो रही है तो देखिए आजकल तो चिट्ठी का किसी को पता ही नहीं है चिट्ठी होती क्या है,
3: इसीलिए तो हमने ये आज का विषय रखा है कि हम जो पुराने जैसे आप जैसे जो लोग हैं उन्हें सब पता है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें पता नहीं है पोस्ट कार्ड कैसा होता है, अंतरदेशीय पत्र कैसा होता है।
4: पोस्ट कार्ड होता था वो 10 पैसे में मिलता था, और अंतरराष्ट्रीय जो हरा लिफाफा होता था 15 पैसे में मिलता, और जो पीला लिफाफा होता था वो 20 पैसे में मिलता था। तो उसके अंदर हम अपने मन के भाव जो होते हैं उसके ऊपर लिख करके अपने प्रियजन, किसी को भी चिट्ठी लिखनी होती थी, अपने घर वालों को या किसी भी दोस्त को या रिश्तेदार को, उसके मन के भाव इस तरीके से पिरो के लिखते थे कि उसमें सारी जो भावनाएं होती हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम चिट्ठियां लिखते थे। अब तो चिट्ठियां लिखने का मतलब ही नहीं है, SMS कर देते हैं या फोन पर ही बातें होती है। जो पहले चिट्ठी का इंतजार होता था, अभी हमारा कोई रिश्तेदार है, कब किसी की चिट्ठी आएगी, डाकिया को

0: लिखते रहते थे पोस्टमैन को कि कब वो हमारे घर में कोई चिट्ठी देके जाता है कि नहीं जाता है
1: जी, उस इंतजार का जो मतलब इंतजार का वो जो पल होता था जब वो डाकिया चिट्ठी लेके आता था, खुशी का ठिकाना नहीं रहता था कि क्या पता अंदर क्या लिखा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक बात वो जो तार आती थी, तार से लोग बहुत घबरा जाते थे, पता नहीं को क्या इमरजेंसी
1: जी,
0: तार जो होती थी वो इमरजेंसी होती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी,
0: होती थी और कुछ दुखद भी घटनाएं भी होती थी
1: जी। किसी की नौकरी लगी तो तार आता था, किसी ने जल्दी कहीं जाना है तो तार आता था।
0: हाँ जी हाँ
1: जी।
0: तो जो चिट्ठियाँ होती थी उसमें तो सुखद भाव ही होता था, उसमें तो हमारा जो जो भी है कार्यक्रम होता था, बताना होता था कि हम ये फलां चीज हमारे घर में कोई फंक्शन है आ जाना, जब मैं आऊँगा, कुछ भी भाव अपने लिखते थे हम अपने। उसमें विशेष जो होता था सबने निवेदन है कि हम अपने घर में राजी खुशी से,
1: सबने निवेदन तो हम स्कूल में लिखते हैं या किसी को बड़े अधिकारी को लिखना हो तब सबने निवेदन लिखते हैं ना, जब अब किसी अपने के लिए हम अगर खत लिखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं लिखते हैं सबने निवेदन जी। और सुनिए राणा जी, हाँ जी जी, आपने कोई खत संभाल के रखा है?
0: देखिए खत तो बहुत है लेकिन आप क्या है कि समय के हिसाब से कागज है ना, कागज कई दफा पानी से भी गल जाता है, कोई उसमें दीमक लग जाती है या कोई किसी तरह से खराब भी हो जाता है। अब तक तो रखा ही था, और पीला पोस्ट कार्ड होता है उसमें जवाबी कार्ड भी होता था जो दो होते थे, उसमें एड्रेस लिख देना कि उसमें लिखा होता था कि हमको जवाब जल्दी देना, तो उसी एड्रेस पे वो जो लिखा होता था उसी पते पे हमारे पास वापस आ जाता था
1: जी। बहुत ही अच्छी बातें और जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद संगीता जी, नमस्कार
1: जी, नमस्कार।

सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि का बाकी का भाग हम लेकर आएंगे 9:30 पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:20 होने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। यूनिवर्सल कार्टन में टेपिंग कर सेब का वजन बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं व प्रचार तक सीमित, एचआरटीसी की खस्ता हालात से बेखबर। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़क निर्माण में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार, गुणवत्ता जांचने के बाद ही ठेकेदारों को जारी होगी पेमेंट। और प्रदेश में आज से मॉनसून फिर सक्रिय, 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कजाकिस्तान के एक्सपोजर विजिट पर गए आईटीआई प्रशिक्षुओं से दूरभाष पर संवाद के दौरान उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट से प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीक, वैश्विक कार्य संस्कृति और व्यावहारिक कौशल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि ये अनुभव राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि यूनिवर्सल कार्टन में टेपिंग कर सेब का वजन बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर 28 से 30 किलो सेब पेटियों में भरा जा रहा है, जो सरकार के आदेशों की अवहेलना है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जिस पर बागवानों को अपना पंजीकरण करना होगा। एमआईएस के तहत सेब खरीद को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 बोरी तक ही खरीदे जाने संबंधी कोई निर्देश सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा ने एमआईएस

0: तहत सेब उत्पादकों के लंबित भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा मात्र 45 करोड़ रुपए जारी करना बागवानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। शिमला से जारी एक बयान में पार्टी प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि कुल देनदारी लगभग 250 करोड़ रुपए से अधिक की है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों तक बागवानों को उनकी मेहनत के पैसे से वंचित रखना राज्य सरकार की विफलता है। उन्होंने राज्य सरकार से MIS के तहत बागवानों की पूरी बकाया राशि तत्काल जारी करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि HRTC की खस्ता हालत और जर्जर बसें आए दिन प्रदेशवासियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही दुर्घटनाएं, तकनीकी खराबियां और अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले बसों के बंद होने की घटनाएं राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि HRTC को मजबूत करने के बजाय राज्य सरकार ने इसे बदहाली के हालात में पहुंचा दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा गंभीर संकट में है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता जांचने के बाद ही ठेकेदारों को पेमेंट जारी की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपए के सड़क कार्य प्रगति पर है और PMGSY के तहत क्षेत्र में 18 नई सड़कें स्वीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर में पार्किंग के लिए 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चंबा जिला की ऐतिहासिक मणिमहेश यात्रा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को बिना पंजीकरण यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चंबा में यात्रा की तैयारियों व व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश रे पासवाल ने बताया कि 1 अगस्त से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी।
1: विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी यात्री जो है वो मणिमहेश यात्रा के लिए नहीं परमिट किया जाएगा। पुलिस विभाग जो है अपने जो बैरियर्स लगाता है तुंगवट्टी ऑनवर्ड्स वहाँ पे सुनिश्चित करेगा। एंड रजिस्ट्रेशन एज ऑफ राइट नाउ इज सेल्फ रजिस्ट्रेशन। मणिमहेश ट्रस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे लगभग 1 अगस्त के आगे से आपको रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सभी यात्रियों से श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि जो जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि पर डे का स्लॉट लगभग 5,000 के आसपास का है, तो उससे पहले पहले अपना ये रजिस्ट्रेशन जो है वो टाइमली कंप्लीट कर लें।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 में बदलाव करते हुए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 23 से 45 वर्ष के स्थान पर 23 से 50 वर्ष कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पात्र आवेदकों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। ऊना जिला में भी मछली पालन किसानों की आय बढ़ाने का साधन बन रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
2: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से ऊना जिला के युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और पारंपरिक खेती के साथ साथ मछली पालन अनेक किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम बनता जा रहा है। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 40% तथा आरक्षित वर्गों एवं महिलाओं को 60% का अनुदान का प्रावधान है। योजना के माध्यम से तालाब निर्माण, गुणवत्तापूर्ण मछली बीज और चारा उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सहायता के अलावा मछलियों को ताजा अवस्था में बाजार तक पहुंचाने के लिए आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल अथवा 3-व्हीलर की खरीद पर भी अनुदान का प्रावधान है। योजना के माध्यम से किसान सजावटी मछली पालन इकाई भी स्थापित कर सकते हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: शिमला नगर निगम द्वारा शहर के बाजारों को नो वेंडिंग जोन बनाने और तह बाजारियों को हटाने की मुहिम के खिलाफ कल तह बाजारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तह बाजारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उन्हें किसी उपयुक्त स्थान पर नहीं बसाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तह बाजारियों के अनुसार पिछले लगभग 15 दिनों से काम पूरी तरह बंद होने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
3: 15 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं हो रही है, किसी के पास अपना रोटी पानी का इंतजाम नहीं है।

0: ये सोए हुए हैं, इनको कोई चिंता नहीं है हमारी।
1: प्रदेश में आज से मॉनसून के सक्रिय होने से अनेक स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है। चंबा व कांगड़ा में रुक रुक कर वर्षा हो रही है, जबकि राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। हालांकि प्रदेश के अन्य भागों में बादल छाए हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है।
2: मानसून एक बार फिर से 18 जुलाई से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा। ये मानसून जो है लगातार 22 जुलाई तक एक्टिव बना रहेगा, जिसका असर जो है पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 18 जुलाई से चालू होगा, और जिसमें रुक रुक के जो है बारिश का दौर पूरे प्रदेश में देखा जाएगा लगभग 22 जुलाई तक। मुख्य रूप से जो हमारे मिड हिल्स हैं और उससे लगे हुए जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे भारी बारिश का भी दौर एक बार 18 जुलाई से हमें देखने को मिलेगा।
1: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, अंब अंदौरा स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं, ऊना होकर चलेगी करतौली एक्सप्रेस। इसी अखबार की एक अन्य खबर है, नीट यूजी में कांगड़ा के आकर्ष हिमाचल के टॉपर। पंजाब केसरी ने प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को सुर्खी दी है, सरकारी कार्यालयों की शिफ्टिंग एक नीतिगत फैसला, न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कर्मचारी बोले, 5 डे वीक से वर्ष में होगी 100 करोड़ रुपए की बचत, दैनिक जागरण की एक खबर है। दैनिक भास्कर व दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, 6 मेडिकल कॉलेजों में 320 सीटें बढ़ाएंगी राज्य सरकार, विशेषज्ञ चिकित्सक बढ़ेंगे। हिमाचल दस्तक लिखता है, पीजी सीटें 270 से 597 करने का प्रस्ताव। पंजाब केसरी की एक खबर है, हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। यूनिवर्सल कार्टन में टेपिंग कर सेब का वजन बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं व प्रचार तक सीमित, एचआरटीसी की खस्ता हालात से बेखबर। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़क निर्माण में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार, गुणवत्ता जांचने के बाद ही ठेकेदारों को जारी होगी पेमेंट। और प्रदेश में आज से मॉनसून फिर सक्रिय, 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जाने।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: एक 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि में। आज के इंटरनेट और व्हाट्सएप के जमाने में जब पलक झपकते ही जवाब मिल जाता है, तो क्या आपको भी खत का इंतजार याद है जो डाकिया कई दिनों के बाद लाता था। ऐसी ही कुछ यादें आपके साथ आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और आपकी यादें जो हैं, और आप इस प्रोग्राम में साझा कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01892224391। हेलो।
6: हेलो,
5: गुड मॉर्निंग जी।
6: वेरी गुड मॉर्निंग मैम
5: जी। कौन बोल रही हैं?
6: मैं सुनीता बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट उन्ना से।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: थैंक यू मैम
5: जी। पहली बार कॉल किया है या करती रहती हैं?
6: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, ट्राई तो कब से करती हूँ धर्मशाला में ना
5: जी,
6: लगा पहली बार है।
5: चलिए, तब तो बहुत खुशी हो रही होगी आज आपको।
6: हाँ जी मैम, बहुत ज्यादा है। दूसरी खुशी तो आपका टॉपिक सुन के हो रही है, बहुत ज्यादा।
5: बिल्कुल बिल्कुल, तो जानना चाहेंगे आपकी खुशी का कारण जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है।
6: मैम, मैंने जब आपका ये टॉपिक सुना ना, मेरे को मतलब एक तो मेरे पापा फोन

0: रहते थे बचपन में ही ना
1: जी।
0: हाँ जी, उनकी जब चिट्ठी आती थी एक एक डेढ़ महीना हम इंतजार करते थे
1: जी। कितनी खुशी होती थी ना जब डाकिया लेकर आता था खत।
0: हाँ जी मैम, जब हम जहाँ घर से डाल देते थे ना खत, तो एक एक दिन को गिनते थे कि पहुंचेगा इतने दिन में, पहुंचेगा इतने दिन में, पहुंचेगा
1: जी। और राखी भी देखिए हम लोग कितनी दूर दूर तक अभी भी भेजते हैं डाक के जरिए, है ना, स्पीड पोस्ट से भेज देते हैं सरहदों पे, जो हमारे वीर जवान जो तैनात हैं उनको हम डाक के जरिए ही भेजते हैं।
0: हाँ जी मैम, मेरा भाई भी फौज में है।
1: अच्छा, तब तो आप भेजती ही होंगी।
0: हाँ जी मैम, करती है उनको पोस्ट राखी
1: जी। और कोई खास याद जो और जुड़ी हो?
0: मैम यही है कि उस टाइम में बहुत सब्र होता था लोगों में ना
1: जी
0: इन चीजों को लेके, अब के टाइम में तो उसका 1% नहीं है लोगों में ना
1: जी। आजकल तो अभी लिखो अभी पता चल जाता है कि उन्होंने पढ़ लिया है, रिस्पांस दिया नहीं दिया। उस समय तो जब अपने हाथों से हम खत लिखते थे तो कई सारी हमारे बातें जज्बात उस खत में हम उड़ेल देते थे।
0: हाँ जी मैम, वो अभी तक भी कैद रखते हैं हमारे पास। अब की बातें में इतना मजा नहीं आता, चाहे हम जितनी मर्जी बात फास्टली कर लें या कुछ भी कर लें, मतलब वो बात नहीं है जो अब पहले थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और खत संभाल के रखा है कोई?
0: हाँ जी मैम, मैंने बट मेरे पापा का नहीं है, मेरे उसके बाद मेरी एंगेजमेंट हुई, मेरे हस्बैंड भी फॉरेन में थे, उनकी चिट्ठियाँ मैंने रखी हुई है।
1: अच्छा अच्छा जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उन खतों में शायरी भी हुआ करती थी पहले जी।
0: मैम हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो जानते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है उसमें
1: जी। हम जब उन्हें उसे बार बार पढ़ते हैं तो पुराने दौर में हम पहुंच ही जाते हैं।
0: हाँ जी, सोचते थे कि वो दिन थे, अच्छे दिन थे मैम, अब तो आपको पता ही है।
1: चलिए आज के दिन भी अभी भी जो ये मतलब हमारे पोस्ट ऑफिस हैं वो बहुत ही अपना मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और कितनी सारी चीज़ें जो है अब भी हमें डाकिया दे के आता है, लेके आता है। और ये जो ट्रेंड है थोड़ा सा बदल गया है, फ़ोन करके ही डाकिया आता है। और
0: मैम वो है ना, पहले ये था कि पता नहीं होता था कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा, आप तो जैसे नेट के जरिए देख लेते अपना पार्सल कि कहाँ पे पहुंचा है, हमें जी, पता जी, चल जी। जाता कि एक दिन में पहुंच जाएगा, दो दिन में पहुंच जाएगा
1: जी।
0: पहले वाली बात थी कि जब एक महीने वाला लेटर पहुंचना, वो सोचो कि कितना सबर था उस टाइम बंदे में।
1: चलिए बहुत बहुत अच्छी जानकारी और यादें आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही फोन मिलाते रहिएगा।
0: हाँ जी मैम, करूंगी जरूर आपको
1: जी, बिल्कुल
0: ना, मैंने सेव कर रखा है आपका नंबर अब ना फोन में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, जुड़े रहिए। और नए श्रोता जुड़ते हैं हमें भी बहुत खुशी होती है जी। हाँ। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
1: अगली कॉल हम लेंगे इस ब्रेक के बाद।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
6: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
5: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
6: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
5: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
6: Hurry, limited stock available.
5: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी।
1: साक्षी बोल रही हूँ नूरपुर से।
0: जी साक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: मैडम

0: क्या आप कैसे ठीक हो?
1: हाँ मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: हाँ हम सुनते रहते हैं, आप बहुत सारे प्रोग्राम में कॉल करती रहती हैं।
0: हाँ जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे गीत भी गाती हैं, ये भी हमने सुना है।
0: हाँ जी, वो तो सभी को पता है
1: जी। तो ये जो डाक बाबू है, ये जो चिट्ठियाँ हैं, खत हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं कहना चाहती हूँ कि चिट्ठियों का समय बहुत अच्छा था।
1: अच्छा,
0: फोन वगैरह तो ऐसे है ना, पहले चिट्ठियां देखते थे तो कितना अच्छा लगता था।
1: नहीं सुनिए सुनिए, आपने भेजी है कोई चिट्ठी या खत लिखा है?
0: नहीं मैडम जी, मैंने कहाँ भेजना, मैंने भेजा ना कभी, मैंने तो भेजा नहीं। पर ऐसे मैं सुनती रहती हूँ कि चिट्ठियों का काम बहुत अच्छा होता है।
1: अच्छा,
0: डाकिया कितना अच्छा लगता है कि आपकी चिट्ठी आई है।
1: आपने डाकिये को देखा है?
0: और हमारे घर में भी आता है डाकिया।
1: अच्छा, कौन से खत लेके आता है?
0: खत नहीं, मेरी पेंशन लेके आता।
1: अच्छा अच्छा हाँ, पेंशन लेके आता है। और पुराने समय में मनी ऑर्डर भी आते थे, तो हम
0: हाँ जी,
1: जो
0: बहुत
1: डाक
0: अच्छा
1: बाबू लेके
0: लगता
1: आता
0: था
1: था। जी
0: हाँ जी।
1: चलिए साक्षी
0: और
1: जी, आपने हमें
0: हाँ जी मैडम जी, मैं चाहती हूँ कि अभी भी बहुत चिट्ठियाँ बड़ा समय चले तो कितना अच्छा लगेगा।
1: तो आप लिख सकती हैं अभी भी चिट्ठियाँ, जो आपके फ्रेंड
0: नहीं
1: हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन्हें आप चिट्ठी लिखिए, एड्रेस लिखिए उसके ऊपर, और पोस्ट ऑफिस में जाके डाल दीजिए और
0: नहीं
1: पहुंच जाएगी आपकी चिट्ठी।
0: मैंने कहाँ जाना पर डालने के लिए,
1: किसी को भेज
0: डाक
1: दो, डाक बाबू आता है उनके हाथ में भेज दो, आप आपकी चिट्ठी वहां पहुंच
0: बाबू तो आता
1: जाएगी।
0: पर मेरे को लिखना थोड़ा काम आता, पर पढ़ी तो मैंने, मैं काम नहीं हूँ ना
1: अच्छा जी,
0: पढ़ने को, मेरे को ना थोड़ा मन काम करता। मैं गाने गाने गाने को बड़ा लगता है।
1: चलिए कोई बात नहीं, आप गाने गाइए और अपने मन को खुश रखिए। और
0: हाँ
1: आपने इसे कार्यक्रम में फ़ोन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: धन्यवाद मैडम जी, जो
1: जी
0: आपने भी फोन उठाया।
1: नहीं नहीं मैं हम तो सभी का फोन उठाते हैं, हम चाहते हैं
0: मैम
1: नए
0: जी,
1: नए
0: मैं तो
1: कॉलर हमें
0: इसलिए
1: कॉल
0: बोल रही हूँ
1: करें।
0: कि
1: जी
0: इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा फोन ना मेरे कमरे में नहीं लगता था, आज लग गया।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, और आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए। जी आप भी इनकी तरह हमें फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 01892224391।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं
1: संगीता जी। मैं बिनु शर्मा बोल रहा हूँ नगांव के पास से।
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका।
1: विनोद विनोद मैडम जी, विनोद।
0: विनोद जी हाँ, माफी चाहेंगे विनोद जी,
1: नहीं नहीं
0: आपका बहुत
1: कोई
0: बहुत
1: बात
0: स्वागत है। और मौसम कैसा है
1: नहीं,
0: वहाँ पर?
1: बादल हो है और गर्मी बहुत है, उमस निकला।
0: अच्छा, हमारे यहाँ बहुत
1: अच्छा
0: बारिश हुई है
1: जी,
0: जी।
1: आज आपने ना बड़ा अच्छा विषय चुना वही खत के बारे में, क्योंकि
0: जी धन्यवाद।
1: मैं डाक विभाग से रिटायर हुआ हूँ,
0: अच्छा, तब तो आप
1: तो
0: बहुत सारी
1: देखा
0: जानकारियां यादें साझा कर सकते हैं हमारे साथ।
1: मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस टाइम ये फौजी वाहन के खत आते थे, भर
0: जी
1: भर के बोले आते थे, और राखी के टाइम में बहना राखी भेजती थी, तो
0: जी
1: डाक विभाग की एक अलग से ड्यूटी होती थी कि राखी को डिले नहीं करना है, अलग से सिस्टम होता था कि जल्दी भेजना इनको।
0: जी
1: तो आज तो खत तो मतलब एक लुप्त प्राण बचा ना, लुप्त हो गया विषय, खत तो कभी हो चुके हैं, ना खत आते हैं ना जाते हैं।
0: जी खत तो नहीं आते जाते हैं, पर और भी चीजें होंगी जो जाती आती हैं।
1: वो तो बहुत बहुत चीजें ना, जैसे
0: जी
1: आजकल गवर्नमेंट के तहत चल रहा है, लेकिन खत जो एक हमारी एक जान थी, हमारी इंतजार होता डाकिया की, डाक आई है, टेलीफोन तो होते नहीं थे, मोबाइल नहीं होते थे, और हमारे ऐसे गीत बने थे, कबूतर
0: जी
1: जा जा

0: क्योंकि ये डाक विभाग का यही सॉर्टिंग सेक्शन होते थे
1: जी,
0: तो हम उनमें सॉर्टिंग करते, जैसे दिल्ली की जी अमृतपुर से आती थी, कांगड़ा से आती थी
1: जी,
0: इन लेटरों को हम एकदम दिल्ली के डिब्बों में, ताकि हर किसी के टाइम से लेटर पहुंच जाए
1: जी जी।
0: आज भी नहीं याद आते हैं कि हम गाड़ी में चलते थे
1: जी,
0: लोगों के ले जाते थे, ले आते थे।
1: अच्छा जी, तो आपने कभी मतलब किसी की चिट्ठी, जैसे पुराने समय में कई लोग पढ़ नहीं पाते थे तो उनकी चिट्ठी भी कई बार लोग डाकिये से ही पढ़वा लेते थे, तो ऐसा कुछ काम किया है आपने?
0: हाँ जी हाँ जी, वो क्या हमारे पास निंगल डैम रेस्ट होता है ना
1: जी,
0: तो वहाँ मैक्सिमम बिहारी लोग आते थे, यूपी के भैया वगैरह जो लेबर काम करते थे, कि बाबू जी हमारा खत पढ़ दीजिए
1: जी। हाँ जी बताइए जी।
0: उस खत के पढ़ने में वो उनकी भाषा थी ना, वो हम समझ आते कौन सी भाषा लिखते है बिहारी, अपनी अपनी भाषा बोलते थे वो
1: जी। अच्छा, तो आप समझा पाते थे उन्हें कि क्या लिखा हुआ है खत में?
0: खत में हिंदी लिखी होती है, बोलने का भाषा उनके ना हम बिहारी भाषा बोलते थे वो।
1: जी,
0: खत लिख दीजिए
1: जी जी।
0: और मतलब ये आज की याद मैंने बहुत ज्यादा कर दिया आपने।
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे साथ साझा की, और आप भी पुराने दौर में पहुंच गए। चलिए, आपकी यादें भी ताजा हो गई, आपने कॉल किया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैडम एक चीज और पूछिए आपसे
1: जी,
0: ये डॉक्टर गुरिंदर सिंह का नाम नहीं आज तो रिटायर हो गए या बदली होगी उनकी?
1: जी, ये सारी बातें आप किसी और प्रोग्राम में पूछ सकते हैं, अभी फिलहाल ये जो प्रोग्राम है वो है सजीव फोन इन गीतांजलि, और हम इसमें विषय से संबंधित ही बातें करते हैं जी।
0: धन्यवाद,
1: आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। आप भी इनकी तरह हमें फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 01892224391।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
1: हेलो
5: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम जी।
1: गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हैं?
5: विनोद कुमार बोल रहा रसोड़ा पालपुर
1: जी। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद
1: जी।
5: मैडम जी, यार वहाँ पुराने दौरे कहाँ पर जाए थे कल हाँ खत लिख रहे चल रहा है ना आकाशवाणी है आपका खत मिला दिन प्रोग्राम चल रहा है
1: जी जी जी। हाँ चलता था वो भी हमारे इधर से, अब SMS के बहाने और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे हम जो है मैसेज लेते हैं, और साथ ही लाइव भी बात करते हैं।
5: लाइव भी करना पहले तो खत में पूरी दिल की सभी बतल जहाँ मतलब दिल का पूरा लिख देते थे ना, तो बड़ी गौर से वो पढ़ा जाता था। तो हम इंतजार रहता कि हमारा खत कब आए, मतलब आकाशवाणी से जवाब उसका। तो खत लिखता था, धर्मशाला में लिखता था और रिश्तेदारों में खत लिखता रहता था। और हाँ तो चलो SMS का जमाना हो गया, आप फिर भी मैं शेर व शायरी और गाने गुने लिखता रहता डायरी
1: जी। तो आप खत में लिखते थे शेर और शायरी?
5: हाँ जी हाँ जी।
1: सुनाना चाहेंगे कोई?
5: अभी तो मतलब याद नहीं है ना, मतलब पूरी तरह तो
1: जी जी
5: मतलब।
1: चलिए कोई बात नहीं, हाँ बहुत साल हो गए हैं अब खत लिखे भी, और लिखा भी नहीं जाता है आजकल जी।
5: अभी मतलब लिखना नहीं छोड़ा, मैं लिखता रहता मैं थोड़े तो जो अच्छी बात आती है वो लिखता रहता डायरी में।
1: जी बहुत अच्छी बात है, और अगली बार जब आप हमें कॉल करेंगे ज़रूर सुनाएंगे अपनी लिखी हुई शायरी हमें, हम इंतज़ार करेंगे जी। आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: खुदा जान।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, हाँ जी बोलिए। कुछ कौन बोल रही हैं,
1: नमस्कार
0: कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैम, मैं समलोटी से बोल रही हूँ, निशु बोल रही हूँ।
0: निशु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत पहली बार कॉल किया?
1: नहीं, इससे पहले बहुत पहले किया था।
0: जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप समय का ध्यान रखती हैं और जितना बताया जाए उस समय के बाद ही कॉल करती हैं। जी बताइए, खतों के बारे में, पुरानी यादों के बारे में। आप हमारी अंतिम कॉलर
1: नहीं,
0: हैं।
1: पत्र तो नहीं भेजा, पत्र
0: जी
1: तो नहीं भेजा, पर ऐसे कई बार अपने भाई को कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, तो
0: जी
1: उससे पूछना कि पहुंचा अभी तक कि नहीं पहुंचा, तो अच्छा लगता है।
0: जी राखी वगैरह भेजती होंगी आप? जी
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, चलिए आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

हम अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि जहां फोन का सिग्नल नहीं होता है वहां भी डाकघर जो है वो खुला हुआ है और वहां से चिट्ठियां पूरे देश और विदेश तक पहुंचाई जाती हैं और वो है हिक्किम। और ये डाकघर खुला था 5 नवंबर 1983 को।

चलते चलते एक ख़ास नज़्म जो मुझे बहुत पसंद आई वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक वक्त था जब वो हमारे मोहल्ले की धड़कन हुआ करता था, उसी पर लिखी ये पंक्तियाँ सीधे दिल को छूती हैं। वक्त बदला, तकनीक बदली और सब कुछ बदल गया। जो कभी पैगाम लाता था वो डाकिया भी अब थक गया। अब उसके थैले में वो जज्बाती खत नहीं होते, सिर्फ कुछ सरकारी कागज़ और बिलों के पुलिंदे होते हैं। पर आज भी जब वो किसी गली से गुजरता है, बुजुर्गों की आंखों में एक पुराना सा दिया जलता है। शायद आज भी किसी को उम्मीद है उस पुराने यार की, जिसने लिखी थी कभी दास्तान अपने पहले प्यार की। चिट्ठियों का वो दौर सचमुच एक एहसास था, जहां दूरियां होने के बावजूद लोग एक दूसरे के बेहद करीब महसूस करते थे। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग हमें दिया सुरेंद्र कपूर ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब मैं संगीता आप सबको कहती हूँ नमस्कार।

श्रोताओं, समय हो चुका है 10:01 आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के समय को जो है हम आपको बता ही चुके हैं और अब जो कार्यक्रम आरंभ होने वाला है वो है गीतों का कारवा। और अब आगे के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो दोस्त प्रवेश। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहरा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना मुहरा फिल्म से ये गीत, जिसमें आवाज दी थी अलका याग्निक और कुमार शानू ने, माफ कीजिए उदित नारायण ने।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नागिन से ये गीत, जिसमें स्वर दिया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म सनम से, जिसमें आप सुनेंगे अलका याग्निक और कुमार शानू को। संगीतकार हैं आनंद श्रीवास्तव और मिलन श्रीवास्तव, और साथ ही इसमें गीत दिया है समीर ने।

सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

यह आकाशवाणी का धर्मशाला है और अभी आप सुन रहे हो श्रोताओं गीतों का कारवां। और अब आप सुन रहे हैं बेताब फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवा। अब समय हो रहा है 10:30। आइए अब मिलकर सुनते हैं पहाड़ों के सुर।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना वर्षा कटोच को। आइए अब मिलकर सुनते हैं कर्नेल राणा का ये अगला लोकगीत।

0: के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। आइए श्रोताओं, इसको बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक सहगान।

0: 103.4 में।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कजाकिस्तान के एक्सपोजर विजिट पर गए आईटीआई प्रशिक्षुओं से दूरभाष पर संवाद के दौरान उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट से प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीक, वैश्विक कार्य संस्कृति और व्यवहारिक कौशल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि ये अनुभव राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि यूनिवर्सल कार्टन में टेपिंग कर सेब का वजन बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर 28 से 30 किलो सेब पेटियों में भरा जा रहा है, जो सरकार के आदेशों की अवहेलना है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जिस पर बागवानों को अपना पंजीकरण करना होगा। एमआईएस के तहत सेब खरीद को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 बोरी तक ही खरीद किए जाने वाले कोई निर्देश सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि एचआरटीसी की खस्ता हालत और जर्जर बसें आए दिन प्रदेशवासियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही दुर्घटनाएं, तकनीकी खराबियां और अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले बसों के बंद होने की घटनाएं राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी को मजबूत करने के बजाय राज्य सरकार ने इसे बदहाली के हालात में पहुंचा दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा गंभीर संकट में है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता जांचने के बाद ही ठेकेदारों को पेमेंट जारी की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपए के सड़क कार्य प्रगति पर हैं और पीएमजीएसवाई के तहत क्षेत्र में 18 नई सड़कें स्वीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर में पार्किंग के लिए 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चंबा जिला की ऐतिहासिक मणिमहेश यात्रा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को बिना पंजीकरण यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चंबा में यात्रा की तैयारियों व व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश पासवाल ने बताया कि 1 अगस्त से पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी।
2: विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी यात्री जो है वो मणिमहेश यात्रा के लिए नहीं परमिट किया जाएगा। पुलिस विभाग जो है अपने जो बैरियर्स लगाता है तुंगहट्टी ऑनवर्ड्स वहाँ पे सुनिश्चित करेगा। एंड रजिस्ट्रेशन एज ऑफ राइट नाउ सेल्फ रजिस्ट्रेशन मणिमहेश ट्रस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे लगभग 1 अगस्त के आगे से आपको रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सभी यात्रियों से श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि जो जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि पर डे का स्लॉट लगभग 5,000 के आसपास का है, तो उससे पहले पहले अपना ये रजिस्ट्रेशन जो है वो टाइमली कंप्लीट कर लें।

0: शिमला नगर निगम द्वारा शहर में फैले बेकार लोहे और स्टील को कबाड़ में फेंकने के बजाय उसका इस्तेमाल कर दुनिया के सात अजूबों की प्रतिकृतियां तैयार की जा रही है, जिन्हें शहर के सात स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है। निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि दिल्ली की एक विशेष फर्म के सहयोग से तैयार किए जा रहे ये अजूबे न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाने में सहयोग देंगे बल्कि सैलानियों के लिए आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स भी साबित होंगे।
1: इसका मकसद ये कि जो चाहे ज़मीन में पत्थर भी पड़ा है कि उसको वेस्ट नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ यूज़ उसका भी होता है। मैसेज ये देते कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं, उसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक सोच एक विचार के साथ उसको आगे माध्यम बना करके हमने उसका इस कार्य को लेकर कर रहे हैं। साथ के साथ इसमें ये केवल मैसेज भी है कि आप जो इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए, कि नहीं तो जंगल में लोहा के गिरा हुआ कभी कहाँ गिरा हुआ वेस्ट पड़ा रहता था। साथ के साथ इसमें सेल्फी पॉइंट्स भी बनेंगे, इसमें लाइटिंग सिस्टम हमारा लगेगा और पर्यटक को भी बढ़ावा देने की हमारी बात है। इसमें जब जब पर्यटक इसमें जब आए तो इसको सेल्फी पॉइंट्स लगाएं, इसमें सात जगह हम इसको लगा रहे हैं।
0: प्रदेश में आज से मॉनसून के सक्रिय होने से कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है, हालांकि प्रदेश के अनेक भागों में बादल छाए हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है।
2: मानसून एक बार फिर से 18 जुलाई से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा। ये मानसून जो है लगातार 22 जुलाई तक एक्टिव बना रहेगा, जिसका असर जो है पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 18 जुलाई से चालू होगा और जिसमें रुक रुक के जो है बारिश का दौर पूरे प्रदेश में देखा जाएगा लगभग 22 जुलाई तक। मुख्य रूप से जो हमारे मिड हिल्स हैं और उससे लगे हुए जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं वहां पे भारी बारिश का भी दौर एक बार 18 जुलाई से हमें देखने को मिलेगा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी ये समाचार रिले किए गए। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर इस समय आप हैं आकाशवाणी शिमला के साथ। अब आनंद लीजिए लोक संगीत का।
4: ३०३.४ मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गूंज पहाड़ों की।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना जन्मजय सिंह व साथियों की आवाज में ये समूह गान।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अगला लोकगीत अब सुनिए आप संतोष सिंह राणा की आवाज में।

आइए श्रोताओं, अब अगला लोकगीत सुनते हैं धीरज शर्मा की आवाज में।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों की गूंज। आइए अब मिलकर सुनते हैं जय हिंद गीत माला।

श्रोताओं, पहला देशभक्ति गीत आपने सुना फिल्म हम हिंदुस्तानी से, जिसमें आवाज़ दी थी मुकेश और साथियों ने। जी हाँ श्रोताओं, आइए अब अपने कार्यक्रम को हम और बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको अगला ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राजपूत फिल्म का ये प्यारा सा देशभक्ति गीत। इसमें आवाज़ दी थी हेमलता, महेंद्र कपूर और मनहर उदास ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जिगरी दोस्त से, जिसमें आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने।

जय हिंद गीतमाला, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फैज अनवर के लिखे गीत के साथ। कुमार सानू और साथियों की आवाजें हैं, संगीतकार अनु मलिक, और फिल्म का नाम है विजय पथ।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में

0: HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार अनु मलिक, गायक कलाकार हैं कुमार सानू और साथी।

0: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 19 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा उच्च रक्तचाप कारण और बचाव। इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित मानव औषधि विशेषज्ञ एवं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शाहपुर जिला कांगड़ा डॉक्टर कविता ठाकुर से आप पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कर लें। रविवार दिनांक 19 जुलाई 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। तो फोन करना ना भूले रविवार दिनांक 19 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: लीजिए सुनिए फूल और कांटे फिल्म का गीत। नदीम श्रवण का संगीत है, गायक कलाकार हैं अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू।

गोपी किशन फिल्म का ये गीत था। आनंद मिलंद का संगीत, गायक कलाकार थे कुमार सानू और पूर्णिमा। इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

नमस्कार प्यारी सखियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम सुनो सखी में। इस आधे घंटे के कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो सखी प्रवेश। और हमारा आज का विषय हर उस माँ के दिल के बेहद करीब है जिसने अपनी बेटी को बड़े ही प्यार से पाला, उसकी हर मुस्कान में अपनी खुशी देखी और फिर एक दिन उसे विदा करके अपने ही आंगन को सूना होते देखा। जी हाँ श्रोताओं, बेटी की विदाई सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो माँ के जीवन का सबसे भावुक पल होता है। बेटी नए घर चली जाती है लेकिन माँ का मन हर दिन उसके आसपास ही भटकता रहता है। वो सोचती है, क्या मेरी बेटी ने समय पर खाना खाया होगा? क्या वो खुश होगी? क्या उसे कोई परेशानी तो नहीं? माँ हर बात फ़ोन पर नहीं कह पाती लेकिन उसके मन में अनगिनत बातें होती हैं। वही बातें कभी दुआ बन जाती है, कभी यादें और कभी एक चिट्ठी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसी एक माँ की अपनी शादीशुदा बेटी के नाम लिखी भावनाओं से भरी हुई चिट्ठी। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं ये मार्मिक चिट्ठी। मेरी प्यारी बिटिया, ढेर सारा प्यार और ढेरों आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने नए घर में खुश होंगी। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान की कल्पना करके ही मेरा मन संतोष से भर जाता है। लाडो, तुम्हारी विदाई के दिन जब तुमने पलटकर आखिरी बार देखा था इस घर को, तो उस पल की तस्वीर जो है ना, वो आज भी मेरी आंखों में बसी हुई है। तुम्हारे जाने के बाद ये घर पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारी खिलखिलाहट, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें, सब कुछ जैसे इन दीवारों में बस गया है। आज भी जब सुबह चाय बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी तुम आकर कहोगी, माँ मेरी चाय कहाँ है? बेटी, तुम्हारे बिना घर तो पहले जैसा घर रहा ही नहीं। अब वो रौनक जो है कहीं नज़र आती नहीं, ना ही उन बातों में, ना ही उस हंसी में। लेकिन श्रोताओं, हमें ध्यान रहेगा आपका, चिट्ठी तो हम आपको पूरी सुनाएंगे लेकिन बीच बीच में आपका मनोरंजन करवाना है, ये चीज़ हम हरगिज़ नहीं भूलेंगे। तो आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी। सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुनो सखी में। और श्रोताओं, हम आज आपको सुना रहे थे शादी के बाद एक माँ की अपनी बेटी को चिट्ठी। तो आइए करते हैं एक बार फिर से इसकी शुरुआत। बेटू, जब से तुम अपने घर गई हो ना, रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ

कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो। मेरी लाडो, शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, नए रिश्ते बनते हैं, नई जिम्मेदारियां आती हैं। शुरू शुरू में हर बात नई लगती है, कभी कभी मन भी घबराता है, लेकिन धैर्य तो तुम्हें रखना ही होगा। धीरे धीरे वही घर तुम्हारा अपना घर बन जाएगा। याद रखना, मीठे शब्द कई मुश्किल रास्तों को अपनाना सिखा देते हैं, इसलिए हमेशा प्यार और सम्मान से ही बात करना। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम अपनी बात ही कहना छोड़ दो। अपनी बात जो है ना, वो विनम्रता के साथ कहना बेटी। सास ससुर का आदर करना, क्योंकि अब वो ही तुम्हारे माता पिता हैं। अगर कभी कोई बात मन में दुख देना तो उसे अपने अंदर दबा कर मत रखना, खुलकर अपने परिवार को बता देना। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जहां बातचीत बंद नहीं होती। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना, समय पर खाना खाना, थोड़ा आराम भी करना। और घर के काम खत्म जो है ना, वो कभी होते ही नहीं है, लेकिन अपने शरीर और मन का ध्यान भी रखना उतना ही ज़रूरी होता है। रानी बेटिया, मुझे पता है कि तुम सबका दिल जीत लोगी, क्योंकि तुमने बचपन से ही दूसरों का सम्मान करना सीखा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अच्छी बहू बनने की कोशिश करना, पर सबसे पहले एक अच्छी इंसान बनकर दिखाना। बेटी, घर को घर बनाने में केवल दीवारें ही नहीं, बल्कि उस घर की सबसे बड़ी पूंजी है आपका विनम्र स्वभाव। तुम्हारे पापा आज भी रोज़ दरवाजे की ओर देखते हैं और कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखें बता देती हैं कि उन्हें अपनी बिटिया की कितनी याद आती है। और मैं तो आज भी तुम्हारी पसंद की खीर बनाते समय एक कटोरी ज़्यादा उसमें से निकाल के अलग रख लेती हूँ। तुम हमारी जान थी और जान रहोगी। जब भी तुम्हें समय मिले एक फ़ोन कर लिया करो। तुम्हारा एक फ़ोन जो है ना, वो पूरे दिन की थकान दूर कर देता है। बिटिया, आज मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ, चाहे जीवन में कितने ही बिजी क्यों ना हो जाओ, अपने रिश्तों के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना। त्योहारों पर एक फ़ोन, जन्मदिन पर प्यार से गले लगाना और बिना किसी वजह के ही हाल चाल पूछ लेना, यही रिश्तों की असली मिठास है। और हाँ, अगर कभी कोई तुम्हारी तारीफ करे तो मुस्कुराना, अगर कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे भी जो है ना, अपनी असफलता समझ के अपनी हिम्मत बना लेना। तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुम्हारी ताकत पर पूरा विश्वास है। इस घर का आंगन हर पल तुम्हारा इंतज़ार करता है, तुम्हारा बचपन आज भी इस घर की दीवारों में मुस्कुराता है। और जब कभी मेरी याद आए तो सिर्फ आंखें नम मत करना, मुझे फ़ोन कर लेना, तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही मेरा मन खिल उठेगा। याद रखना बेटी, दूसरी बहुत सी बातें होती हैं, दूसरे हम रास्ते भी बहुत से निकाल लेते हैं, लेकिन माँ और बेटी का दिल जो है ना, वो एक होता है। भगवान तुम्हें हर दुख से बचाए, तुम्हारे घर में प्रेम सम्मान सुख और समृद्धि बनी रहे, तुम्हारी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए और हर शाम सुकून से भरी हो। मेरी हर दुआ तुम्हारे साथ है, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, तुम्हारी माँ। सखियों, माँ की चिट्ठी कभी सिर्फ कागज़ पर लिखे शब्द नहीं होते, वो दुआओं का ऐसा खजाना होती है जिसे बेटी जीवन भर अपने जीवन में संजोकर रखती है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आज ही उन्हें गले लगाइए और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस
1: की
0: यात्री
1: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
6: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की

0: शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: पहुंच चुके हैं सुनो सखी की छोटी सी रसोई में। कहते हैं रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार के प्यार का स्वाद यहीं से शुरू होता है। जब सखियों घर में कुछ चटपटा और अलग खाने का मन हो, तो क्यों ना आज हम बनाएं सभी की पसंद का वेज मंचूरियन। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री। सखियों, इसके लिए हमें चाहिए 2 कप बारीक कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी, 1 गाजर कद्दूकस की हुई, 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 से 3 बारीक कटी हुई मिर्च और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच मैदा, नमक जो है वो आप स्वाद अनुसार ले सकती हैं, काली मिर्च पाउडर और तेल तलने के लिए। अब आपको ग्रेवी बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए वो भी नोट कीजिए। 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 छोटे चम्मच बारीक कटा लहसुन और अदरक, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और 2 स्पून आपको टमाटर की सॉस चाहिए, साथ में 1/1 चम्मच सोया सॉस और चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच सिरका, 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 चम्मच पानी में वो भी घुला हुआ होना चाहिए और नमक और काली मिर्च जो है वो आप स्वाद अनुसार ले सकती हैं और साथ ही हरा प्याज सजाने के लिए। तो सखियों अब सुनिए विधि। सबसे पहले पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक और काली मिर्च मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें आप। अगर सब्जियों से पानी निकले तो इसे अलग से पानी इसमें ना डालें और छोटे छोटे गोल बॉल्स बनाकर गरम तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक इसे तल लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करें और उसमें लहसुन और अदरक भून लें, फिर प्याज और शिमला मिर्च डालकर हल्का कुरकुरा रहने तक इसे पका लें। उसके बाद सखियों टमाटर सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस और साथ में सिरका डालकर इसे अच्छे तरीके से मिला लें। थोड़ा पानी डालें और उबाल आने पर कॉर्नफ्लोर पर इस घोल को मिला दें। जब ग्रेवी गाढ़ी होने लगे तो तले हुए मंचूरियन बॉल्स डालकर 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएं और ऊपर से हरा प्याज डालकर गर्मा गर्म वेज मंचूरियन परोसे। इसे आप फ्राइड राइस, नूडल या सादा चावल के साथ भी खा सकती हैं। तो सखियों आप भी अपनी रसोई में इस आसान और स्वादिष्ट वेज मंचूरियन को ज़रूर बनाइए। यकीन मानिए परिवार की तरफ से जो है ना तारीफ ना हो ऐसा तो हो ही का ही नहीं। और अगली मुलाकात में फिर लौटेंगे एक नए स्वाद से भरपूर रेसिपी लेकर। अब चलते चलते सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम को आपके रेडियो सेट तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया सुनील कुमार ने और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपनी रेडियो सखी प्रवेश को दीजिए अनुमति। श्रोता सखियों नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। FM बैंड 103.4 MHz पर दोपहर के 1 बजने

0: हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नीति को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। PV सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी

0: receiving treatment. Kritubamba added that he is fully conscious and has all his vital parameters are stable. The India Meteorological Department, IMD, has issued red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Uttarakhand till tomorrow. In badminton, Indian shuttler and two-time Olympic medalist P.V. Sindhu stormed into the women's singles final of Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4, Chen Yufei of China, retired during the second set of the match. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: एक और श्रोता है जिन्होंने कहा, कह दिया हाले दिल तो एक सुकून पा लिया, खामोशी का वो भारी बोझ दिल से हटा लिया। क्या बात है, क्या हाले दिल कह पाए, अपनी बात कह पाए, या बस दिल की दिल में ही रह गई। किस गीतकार का है ये गाना, यही है आपको बताना, और साथ में ये भी कि आपने कब किसको प्रेम पत्र लिखा था। ये जो लव लेटर लिखने की बात है, जरा आज इस राज को खोल ही दीजिए।

संगम फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे सवाल के जवाब में। एक श्रोता लिखते हैं कि सगाई के बाद अपने होने वाले पति को प्रेम पत्र लिखा था, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था जवाब भी आया करता था, और ये ख़त हमने पिछले 28 साल से संभाल कर रखे हैं। एक और श्रोता कहते हैं, ज़िंदगी में हर रोज़ न जाने कितनी बातें हम किसी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और आगे वो लिखते हैं कि जैसे भोलेनाथ ने विष को गले में रख लिया था, वैसे ही कई बातें हम विष समझकर पी लेते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने किसी को लव लेटर लिखा, लेकिन कुछ मित्रों को ज़रूर लव लेटर लिख के देते थे जो हम नहीं लिख सकते थे, उनके जज्बात हम अपनी कलम से लिखते थे। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि पुराने पन्ने पलटवा रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप सोच कर आए हैं कि हर किसी के छिपे हुए राज निकलवाएंगे। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि कहना तो चाहते थे कहा भी, पर लोगों ने सुनी और फिर हमें ऐसा छोड़ा कि जैसे हम कुछ नहीं थे। ये एक श्रोता अपना दुख शेयर कर रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि लव लेटर लिखा नहीं था, किसी का मिला था, वो भी सांकेतिक भाषा में, क्योंकि वो ज़माना ही ऐसा था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। ट्यूशन पढ़ते समय उसकी हया भरी नज़रें, संग मुस्कान को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, ये 50 साल पुराना वाकया है। ये एक श्रोता हैं उन्होंने कहा। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं, शादी के बाद जब मायके जाती तब ये सोचती मम्मी पापा से ये कहूँगी वो कहूँगी, पर जब मिलती थी तब न जाने उनकी बातें सुनने में ऐसी रम जाती थी कि बहुत सी बातें बाद में याद आती थी कि ये कहना था वो कहना था, पर कई बातें कुछ कभी बोल नहीं पाई, पापा नहीं हैं पर कह नहीं पाई बातें। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कॉलेज लाइफ में जिससे जो कहना था कह नहीं पाए और वो दूर चली गई। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि प्रेम पत्र की बात चली है तो बता देता हूं कि बिफोर मैरिज मैंने भी बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, एक ही को, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। अभी संभाले हुए हैं, कोई रविवार की मस्तानी शाम को फिर से पढ़ लेते हैं। ये एक श्रोता की बात है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, लिखते हैं कि जो दुनिया से चले गए उनसे बहुत कुछ कहना था। और इसके अलावा और एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कहना बहुत कुछ था पर कह नहीं पाए, फिर देर हो गई, कुछ शर्म और कुछ डर रहा। ये तमाम श्रोताओं की बातें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाना सुनते हैं। ये आपको बताना है फिल्म का नाम। प्रेम पत्र की बात हुई तो कई लोगों ने जवाब दिए। अब जरा ये बताइएगा कि नॉर्मल चिट्ठी पिछली बार कब और किसको लिखी थी आपने?

एक श्रोता बड़े अफसोस से कह रहे हैं, क्या बताएं यूनुस जी, किस्मत कुछ ऐसी रही कि श्रीमती जी के अलावा किसी को प्रेम पत्र नहीं लिख पाए। अब श्रीमती जी जब भी मायके जाती थीं तो लिख दिया करते थे, फिर मोबाइल आने पर यह सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया है और संदेश बॉक्स के साथ सांकेतिक इमोजी से ही लोग काम चला लेते हैं, और जो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो उनकी भला से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक श्रोता ने लिखी है। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि चिट्ठी एक बार भी नहीं लिखी लेकिन पोस्ट ऑफिस से पार्सल बहुत सारे पोस्ट किए हैं रिसेंटली। एक श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि नॉर्मल चिट्ठी लिखे, पिछली बार कब लिखी थी ये तो याद नहीं है, पर पिताजी का लिखा हुआ 1978 का अंतर्देशी मिला, आज पिताजी नहीं है पर ये पत्र मैंने संभाल कर लिखा। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती को लिखा था, बहुत बढ़िया बात। एक और श्रोता ने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती में लिखा था, और उनकी इल्तिजा ये है कि मनचाही गीत कार्यक्रम में शामिल

कि कमेंट से एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त उड़िया था, उसे एक हिंदी भाषी लड़की से प्यार हो गया था, वो मुझसे हिंदी में प्रेम पत्र लिखवाता था, वही पहला प्रेम पत्र था। भाई देखिए, वाया वाया प्रेम पत्र यानी किसी और के लिए लिखे गए प्रेम पत्र की बात है, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ और कमेंट्स अगले गाने के बाद शामिल किए जाएंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आई थी, वो इमोजी की और डिजिटल संवादों की थी, तो यहाँ बताइएगा कि क्या चिट्ठी पत्री की जगह जो व्हाट्सएप और डिजिटल संवाद ने ले ली है, या जो इमोजी के जरिए संचार है, इमोजी के जरिए अपनी बात कहना है, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, क्या इमोजी सचमुच में आपके जज्बात को सामने वाले तक पहुँचा देते हैं, या ये शॉर्टकट तरीका आपको पसंद नहीं। दूसरा, व्हाट्सएप संवादों से ज्यादा आनंद चिट्ठी में आता था या नहीं।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होटों पे

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: भाई हमने अपने श्रोताओं से ये पूछा था कि इमोजी के बारे में उनकी क्या राय है, तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पत्र लिखते और पढ़ते वक्त जो भाव मन में आता है वो किसी इमोजी या व्हाट्सअप चैटिंग से नहीं आता, केवल खाना पूर्ति होती है। इसके अलावा एक और श्रोताएं लिखती हैं कि डाकिए का इंतज़ार करना और खत का लिफाफा खोलना, इसमें जो उत्सुकता थी वो किसी डिजिटल नोटिफिकेशन में नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि व्हाट्सएप में वो फीलिंग नहीं आती है जो हम लेटर में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि चिट्ठी में जो लिखा जाता है उसमें संवेदनाएं होती हैं, विश्वास होता है, उम्मीद होती है, प्यार होता है। किसी की चिट्ठी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे हम बातें कर रहे हैं, और चिट्ठी पढ़ने के बाद हमारे दिल और दिमाग में एक उथल पुथल आती है जो हमें बेचैन कर देती है, लेकिन व्हाट्सएप और इमोजी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें हमने कुछ अभी पढ़ा था। इसके अलावा एक और श्रोता है लिख रहे हैं कि इमोजीज का आजकल बहुत अच्छा उपयोग हो गया है, कई बार कुछ भी लिखने के लिए इमोजीज से मन की बात अच्छे से जाहिर हो जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्लैंकली लिख दें तो उसका वो अर्थ ना निकले जो इमोजी के बाद होता है। तो एक श्रोता है जिन्होंने इमोजी का सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि हमें इमोजी नहीं पसंद है, फिर भी भेजते हैं जल्दी के लिए, वैसे लिखकर संदेश भेजना ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनकी सहेली हमारे कॉलेज के पते पर खत भेजती थी और हमारे खत को पढ़कर उन्हें सुनाती थी। ये बात 57-58 साल पहले की है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि आपने ये जो पूछा है इमोजी का, तो इमोजी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फीलिंग बता पाते हैं, आजकल के बच्चों को बता पाते हैं, पर मुझे तो इमोजी से कोई फीलिंग नहीं आती। ये एक श्रोता की बात है। तो भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह से अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं और इमोजी के बारे में अपनी बात कही है। देखिए ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफ़र, इसके बहाने कितने सारे श्रोताओं के ख्यालात हमें पता चले, और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं ना फेसबुक पर, लगातार ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। और इसी पल एक श्रोता ने ये लिखा है कि कम ही हमें इमोजी की भाषा समझ में आती है, ना समझी से खुशी की जगह गुस्से वाली इमोजी भेजने से बहुत सारे मित्र हमसे नाराज भी हो गए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कागज़ पर लिखी चिट्ठी तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, पर मोबाइल तकिए के नीचे रखकर कैसे सोएं। चिट्ठी हमें अपनी चिट्ठी में हम अपने जज्बात उड़ेल देते थे, चिट्ठी में उसका चेहरा देखते थे, जो बात पत्रों में है वो मोबाइल के मैसेजेस में कहाँ है। कितनी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, डिजिटल चिट्ठियाँ और फिजिकल चिट्ठियाँ यानी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए संदेश, इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हैं, और दूसरी बात क्या इमोजी सचमुच में अपनी बात कहने का अच्छा जरिया है, ये दोनों बातें बताइएगा। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

भाई ये गाना ख़त्म हो गया और इतने सारे मैसेजेस इस बीच धड़ाधड़ आए हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाऊँ। चिट्ठियाँ दिल की बात शब्दों में पिरोने के लिए वक्त और सब्र मांगती हैं, जो एक गहरी आत्मीयता पैदा करता है। हाथ से लिखी चिट्ठी हमेशा के लिए एक निशानी बन जाती है जिसे सालों साल सहेज कर रखा जा सकता है, ये हमारे एक श्रोता की बात है। उसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पहले चिट्ठी लिखना पढ़ना पर लिखवाने वाले के आंसू और पढ़ते समय भी उनकी रुलाई देखकर अपनी भी रुलाई आती थी। मैं नानी के साथ रहती थी, माँ दूर रहती थी और जब भी नानी अपनी बेटी को पत्र लिखवा रही होती थी तो आधी बात रोते रोते ही लिखी जाती थी और मैं रोते रोते लिखते चली जाती थी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखने के बाद जब उसे पहुंचने का नंबर आता था तो रिश्वत भी खिलानी पड़ती थी, बच्चों को आइसक्रीम टॉफी बिस्किट। ओहो हो, ये कहने का मतलब है आपका, मैं समझा। इसके अलावा एक श्रोता

होता है जो ये कह रहे हैं कि आज की छोटी सी इबारत में बहुत कुछ कह दिया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इमोजी डिजिटल भाव त्वरित प्रकट कर देते हैं। आजकल के लोगों के पास इतना समय कहाँ है सुनने बताने का, पर पत्र में तो पूरी बात लिखने और बताने का आनंद ही अलग था। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैसेज के बीच बीच में इमोजीज यूज़ करने से वो ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि इमोजी और ऑटो टेक्स्ट दोनों खतरनाक हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती में वो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं और उनकी शिकायत ये है कि आज तक उनकी चिट्ठी शामिल नहीं हुई है। एक श्रोता ने बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर दिया, पहले चिट्ठियां एक तार वाले स्टैंड में घोप कर रखी जाती थी, नीचे लकड़ी का एक गोल सा टुकड़ा रहता था, सारी चिट्ठियाँ सुरक्षित रहती थी। आज भी हमारे पास 70 साल पुरानी चिट्ठियाँ संग्रहित हैं। 70 साल, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इमोजी तो हमें शुरू से समझ नहीं आया और कई बार गलत सलत इमोजी भिज जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, दिल की धड़कन, आत्मा की प्रतिध्वनि है। जब हम कागज़ पर कलम चलाते हैं तो हमारी उंगलियों के साथ साथ हमारी भावनाएं भी बहती हैं। पत्र में ठहराव होता है, गहराई होती है जो पढ़ने वाले के दिल को सीधे छूती है। और दूसरी ओर इमोजी आज के दौर का शॉर्टकट है। भाई, शॉर्टकट का ज़माना है, ये हमारे तमाम श्रोता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले पत्र लिखने के लिए फूल का फोटो बनाना पड़ता था, चिट्ठियों में परफ्यूम तक डाले जाते थे, ये इमोजी में कहाँ हो सकता है। चिट्ठी छूकर जो निकटता महसूस होती है वो डिजिटल संदेशों से नहीं होती। एक और श्रोता, जज्बात सिर्फ खत से महसूस होते हैं, जब खत पढ़ना शुरू करते थे तो यूं लगता था सामने वाला हमारे सामने खड़े होकर कुछ कह रहा है। कितनी प्यारी बातें। चलिए ये तमाम बातें और उसके बाद ये गाना, आप फिल्म का नाम बताइए।

अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, और एक श्रोता ने इसकी एक पंक्ति को कोट किया है, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपने यादों का पिटारा खोल रखा है जिसमें चिट्ठियों भरा प्यार है, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पुराने जज्बात हैं जो हमें सदा जवां रखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि मैंने तो कभी पत्र नहीं लिखा, लेकिन मेरे बड़े पापा हैं वो वायलिन वादक हैं और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रंग बिरंगी इमोजी बहुत सुंदर दिखती हैं और वो आपके संदेशों को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो भाई एक पहलू ये भी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वक्त था जब लोगों के पास समय बहुत था और भावनाएं अपरंपार थीं, चिट्ठियां पोल भी खोलती हैं, अगर किसी की चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए या कोई पुरानी चिट्ठी किसी के हाथ लग जाए तो आपसी संबंध तक खराब हो सकते हैं। ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भागदौड़ आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठकर चिट्ठियां पढ़े, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आया एक जमाना था जब डाकिया घर पर आता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज के समय में अजीब लगेगा लेकिन मैं अभी भी दीपावली, न्यू ईयर, ईद और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स एनवेलप पोस्ट से स्टैंप लगाकर भेजता हूं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कितनी प्यारी बात है, ये पुरानी परंपरा को आपने आज तक कायम रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया।

है और तमाम श्रोता जब सुनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ज़माना था जब आई लव यू कहने से पहले लोग ख़त लिखते थे, उस ख़त में जल्दीबाजी नहीं होती थी, इंतज़ार, अपनापन और ढेर सारे एहसास होते थे। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तमाम कमेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुख्य मुख्य कमेंट्स को मैं शामिल करता चला जा रहा हूं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अब जरा सोचिए कि दिल की बात कहने की जो झिझक है, उसे साहिर लुधियानवी ने इस गाने में किस तरह से पिरोया है। फिल्म का नाम आप बताइएगा और साथ में ये कि क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ कहना है और फिर लगा छोड़ो अब क्या कहना है, यानी आप संकोच संकोच में रह गए।

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई

में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन ऐन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार। मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात, और उसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़, ये जो मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूँ, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है। ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर बुलाकर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अब ये मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें, तो हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इमोजी के जरिए हम तो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते, पर हाँ बच्चे ज़रूर जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो, और उसके बाद किसी ने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया और उसके बाद आप बहुत हंसे हों? ये किस फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और तब तक ये जो डिजिटल संदेश है ना, इनमें कई बार ये होता है कि किसी को भेजा जाने वाला संदेश किसी और को भेज दिया जाए। इस तरह का गड़बड़ झाला भी आपने किया है तो बताइए।

0: पूछो ना यार क्या हुआ।
1: जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना ज़रूरी है ये इस कमेंट के ज़रिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। और दिन की इस भागदौड़ में आपको जहां कहीं भी रहना है विविध भारती के संग रहना है।

सिलसिला ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी सिलसिले का हिस्सा होता है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम पहर तक हर पल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिश्तों का सिलसिला, सपनों का सिलसिला, संघर्षों का सिलसिला और सफलताओं का सिलसिला, यही जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी एक अनवरत सिलसिले पर ही आधारित है। ऋतुओं का बदलना, नदियों का बहना, समय का आगे बढ़ना हमें यही सिखाता है कि रुकना जीवन का स्वभाव नहीं है। जीवन तब तक सुंदर है जब तक उसके भीतर आगे बढ़ने का सिलसिला बना रहता है।

जीवन के इस सफर में कई बार कुछ सिलसिले अचानक टूटते हुए प्रतीत होते हैं। कोई अपना दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, या परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के विपरीत हो जाती हैं। ऐसे क्षणों में लगता है कि सब कुछ थम गया है, लेकिन वास्तव में जीवन कभी रुकता नहीं। एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है। यही समय का नियम है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी। टूटे हुए सिलसिलों की राख से ही नए अवसर जन्म लेते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियां हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि एक नए सिलसिले की शुरुआत करने के लिए आती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वे हर अंत में एक नई शुरुआत खोज लेते हैं।

मानव सभ्यता का इतिहास भी एक लंबे और प्रेरणादायक सिलसिले की कहानी है। पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन ज्ञान, संस्कार, संस्कृति और अनुभवों का प्रवाह लगातार आगे बढ़ता रहा। आज हम जो कुछ हैं, वो उन अनगिनत लोगों के प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने अपने समय में कुछ अच्छा करने का सिलसिला जारी रखा। यही कारण है कि हमें भी अपने कर्मों, अपने मूल्यों और अपने सकारात्मक विचारों का सिलसिला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे प्रयास भविष्य की किसी बड़ी कहानी का आधार बन सकते हैं। अंततः जीवन का सार यही है कि हम उम्मीद, प्रेम और मानवता का सिलसिला कभी टूटने न दें। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, तब तक जीवन में अर्थ, ऊर्जा और आनंद बना रहेगा।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों पे सच्चाई रहती है।
0: तो सुनना ना भूलिए 21 और 22 जुलाई को शाम 4 बजे। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार दिल्ली से।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
6: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे

0: आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम वन की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
2: Congratulations in space for facilitating
3: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
2: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
5: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता

0: भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
0: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
2: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने

0: वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पर आप विविध भारती के संग हैं, सदाबहार नगमे।

हम रही फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आज है जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस सुमन कल्याणपुर की आवाजों में जुआरी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: देवदास फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। ये प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इसके साथ ही भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर दी है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। उन्होंने स्काई रूट कंपनी की टीम से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का भी निमंत्रण दिया।
1: भारत और पूरी टीम

0: और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेज फर्स्ट कॉन्क्लेव में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में भी उन्हें मारेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की इस नीति को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
1: सोलन जिला में जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कार्य लगातार जारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1970 से पहले जन्मे व्यक्तियों के मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार शपथ पत्र और दो गवाहों की आवश्यकता होती है।
3: सर्टिफिकेट को डिजिटलाइज किया जा रहा है। पुराने बर्थ सर्टिफिकेट हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं उनको भी डिजिटलाइज करने का काम किया जा रहा है। पंचायत सेक्रेटरीज के पास रिकॉर्ड हैं या कुछ रिकॉर्ड हमारे पास हैं, उसका सारा रिकॉर्ड वो डिजिटल माध्यम से अपने आप अपलोड करते हैं। उसके बाद जो चीफ रजिस्ट्रार है, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर चीफ रजिस्ट्रार है, हम उसको उनका रिकॉर्ड देख के, उनका जो मैनुअल सर्टिफिकेट है उसको देख के को हम डिजिटलाइज करने की अनुमति देते हैं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, रजिस्टर नहीं हुआ है पंचायत सेक्रेटरी के पास तो या म्यूनिसिपल कमेटी के पास या हॉस्पिटल जहां पैदा हुए वहां रजिस्टर नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको 1970 के बाद के जो पैदा हुए लोग हैं वो चीफ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से परमिशन लेंगे और जो 1970 से पहले पैदा हुए लोग हैं वो चीफ रजिस्ट्रार से परमिशन लेंगे।
1: प्रदेश में आज से मॉनसून के सक्रिय होने से विभिन्न इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। चंबा और कांगड़ा जिला में रुक रुक कर वर्षा का समाचार है। हालांकि प्रदेश के अन्य भागों में बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार के अनुसार 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है।
4: एक बार फिर से 18 जुलाई से हमारे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा। ये मानसून जो है लगातार 22 जुलाई तक एक्टिव बना रहेगा, जिसका असर जो है पूरे प्रदेश में सभी जिलों में 18 जुलाई से चालू होगा और जिसमें रुक रुक के जो है बारिश का दौर पूरे प्रदेश में देखा जाएगा लगभग 22 जुलाई तक। मुख्य रूप से जो हमारे मिड हिल्स हैं और उससे लगे हुए जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं वहां पे भारी बारिश का भी दौर एक बार 18 जुलाई से हमें देखने को मिलेगा।
1: युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत सिरमौर द्वारा नशा मुक्त युवा विकसित भारत विषय पर सिरमौर में मेगा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। माय भारत सिरमौर की जिला युवा अधिकारी अमरीशा शर्मा ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी 24 जुलाई तक मेरा युवा भारत पोर्टल पर संबंधित प्रतियोगिता श्रेणी में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 बजे। नमस्कार।
5: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। अब सुनिए किन्नौर जिले की चिट्ठी। इसके लेखक हैं सुमेश कुमारी, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का है।
6: जिला किन्नौर के उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि शिपकिला चीन सीमा व्यापार इस वर्ष 1 अगस्त से शुरू होकर 30 नवंबर तक संचालित होगा। इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में व्यापार सत्र की तैयारियों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने ट्रेड अधिकारी व तहसीलदार पुह भीम सिंह नेगी को व्यापारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समय पर सभी आवश्यक यात्रा और व्यापार दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

0: साथ ही 54 ट्रेड मार्ट का निर्माण शीघ्र पूरा करने को कहा ताकि सीमा पार व्यापार सुचारू रूप से संचालित हो सके। उन्होंने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, सेना, कस्टम विभाग और ITBP सहित सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि सभी एजेंसियां मिलकर कार्य करें ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और शिपकिला चीन सीमा पर वस्तु विनिमय प्रणाली सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके। रिकांगपियो स्थित LPG गोदाम में घरेलू गैस सिलेंडरों से कथित गैस निकासी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि उसने गोदाम में एक श्रमिक को घरेलू सिलेंडर से गैस निकालते देखा और इसका वीडियो बनाकर निष्पक्ष जांच की मांग की। वायरल वीडियो के बाद खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम ने LPG गोदाम का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 27 घरेलू और 2 वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों का रैंडम आधार पर वजन किया गया। अधिकारियों के अनुसार सभी भरे हुए सिलेंडर निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए और सभी सीलबंद थे। जांच में किसी भी सिलेंडर से छेड़छाड़ या गैस निकासी के प्रमाण नहीं मिले हैं। निरीक्षण रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि श्रमिक संभवतः पहले से खाली पड़े सिलेंडरों में बची हुई गैस निकालने का प्रयास कर रहा था। हालांकि एजेंसी प्रबंधन और जांच दल ने स्पष्ट किया है कि ये केवल प्रारंभिक आकलन है और इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। अधिकारियों के अनुसार मामले की वास्तविक स्थिति संबंधित श्रमिक से पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल श्रमिक से संपर्क नहीं हो सका है क्योंकि उसका मोबाइल फोन बंद है और वो अपने निवास स्थान पर भी नहीं मिला। इधर भाजपा नेता सूरत नेगी ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि किसी भी संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल जांच में भरे हुए सीलबंद सिलेंडरों में कोई अनियमितता नहीं मिली है। अब सभी की नजर आगे की जांच और संबंधित श्रमिक के बयान पर टिकी है, जिसके बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। जिला में किन्नौर कैलाश यात्रा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। प्रशासन द्वारा इस वर्ष यात्रा पर रोक लगाए जाने के बावजूद कथित रूप से श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रहने से स्थानीय देव समाज और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। इसे लेकर विभिन्न गांवों के देवी देवताओं के कारदारों, प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय रिकांगपियो में विशाल रोष रैली निकाली और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने सुरक्षा और प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुए यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद प्रतिबंधित क्षेत्र से लोगों की आवाजाही हो रही है और प्रशासन इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। देव समाज का कहना है कि किन्नौर कैलाश केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि देवी देवताओं का पवित्र निवास स्थान है। उनका आरोप है कि अनियंत्रित आवाजाही से धार्मिक परंपराओं, हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण, जैव विविधता और प्राचीन ग्लेशियरों को नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना है कि स्थानीय परंपराओं के अनुसार इस क्षेत्र में प्रवेश से पहले विशेष धार्मिक विधि का पालन किया जाता है और बिना अनुमति प्रवेश धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। देव समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने, निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि अनाधिकृत आवाजाही तुरंत नहीं रोकी गई तो देव समाज स्वयं यात्रा रोकने के लिए बाध्य होगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसी के साथ किन्नौर जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे किन्नौर जिला की चिट्ठी, लेखक सुमेश कुमारी और वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का था। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देशभर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

ईद मुंजा ईद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है वो उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजा राम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से। जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनीता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहलापुर दम्बा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगर फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा गोला से गजानन कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदूर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हसर जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मन चाहेगी।

0: मनमानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ, मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ। मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता, वो आया कि नहीं?
0: अरे रुकिए, मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ?
0: आपका फोन आया,

0: ने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुंच गया है।
1: अरे गुड़िया, तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओफो नानी, आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड?
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही है, अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया, खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता, तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
0: अरे नानी, वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी, हैं?
0: हाँ, और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है, उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है, उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा, मेरी बातों की दादी, अब ये बता, आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा, गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी, नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
1: बाय बेटा।
2: सब लोग।
0: वाओ रायता, माय फेवरेट। मम्मी, और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है? मैं देख लूं खोल के?
2: हाँ हाँ, देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो, बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी, ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा?
2: गुड़िया, लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
3: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई, हम भी तो चखले थोड़ा सा।
0: मम्मी, आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
2: जिसने बनाया है ना, उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओह नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
2: यस।
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा, तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है, न बर्तन, अब तेरी माँ भला कितना खटेगी। बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुकुम देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियाँ निकालना आता है।
0: क्या पापा?
2: अरे, आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ, आ बेटा।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैतरा है।
2: जी हाँ, वो तो है।
4: खाओ खाओ, पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है, बाद में मत कहना कि पापा सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
2: तो पापा, शुरू बस करिए है, नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
4: अच्छा सच में?
2: हाँ,
4: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
3: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले।
3: अरे बहू, हम सब एक ही साइड में है, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ए गुड़िया, तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
0: अरे दादी, पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो तू उन्हें पूरी खबर देती है?
0: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा कैसे, लेकिन
0: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
0: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
3: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर

0: कहते हैं खिड़की से कैसे भला आया। ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना?
1: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
0: तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
1: हाँ,
0: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
1: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
0: ओहो दादी, लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है तो फाइंड आउट कैसे करूंगी। हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
1: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है रे?
2: अम्मा अम्मा, आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
1: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
0: हाँ, तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुंच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
1: हाँ,
0: और भूरे को कुछ खाने को देता है
1: रोज,
0: और नहीं तो क्या।
1: अच्छा,
0: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
3: अम्मा, इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था? मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
0: हाँ, रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
1: हाँ हाँ, कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
3: गुड़िया याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
2: हाँ।
3: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता। खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
2: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
3: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
2: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे। दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए, आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
0: ओ मम्मा, भूरे की बात बताइए ना।
2: हाँ, अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता ही जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर। इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम न आदम चात। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया है। और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहाँ जाए, कैसे करे और कैसे बस्ती में पहुंचे।
1: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
2: हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रही है। आप जरा सोचिए, सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े है धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले। अम्मा
1: बहू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
2: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो सिमटे रहते हैं।
1: हाँ।
2: पर उस दिन, हाँ अम्मा उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
3: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
2: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे, बचाए और कैसे लेके आए। और याद है ना, यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
3: हाँ।
2: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
3: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया। हाँ?
1: क्या, घर लाने का?
3: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें?
2: हाँ, हाँ, हाँ,
3: गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है?
0: पापा पापा पापा।
3: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
0: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
3: अरे क्या है बताओ।
0: पापा, पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। I think he is lost.
3: हाँ, भूखा और परेशान है लगता, कहीं से भटक के आ गया।
0: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, we must do something.
3: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
0: पापा क्या?

0: बेचारे पापी को कुछ खाने को दे आए प्लीज पापा।
1: इस समय लॉकडाउन में
0: प्लीज पापा।
1: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं नहीं नहीं नहीं जा नहीं सकते।
0: अरे पापा ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
1: देखते हैं देखते हैं, भूखा तो है, सोचने दो। अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ, कुछ दे आऊंगा, ठीक है? तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
2: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे दी ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना?
1: हाँ।
2: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। है लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया, ठीक है? ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
1: अरे हाँ लगा लिया है।
2: सैनिटाइजर रखिए भाई।
1: अरे रखा है भाई।
0: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से देखना है।
2: तुम वहाँ क्या करोगे?
1: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
2: कमाल है आप तो।
1: तुम डरोगी तो नहीं ना?
0: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
1: हाँ चल चल चल,
2: मतलब डरोगी नहीं, ये क्या है
0: मम्मा प्लीज।
1: चलो चलो चलो, ले लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
0: हाँ हाँ पापा आइए।
3: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
2: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
0: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
2: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए।
0: इतनी रात को लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
2: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में।
0: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
2: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
0: हेलो हाँ मम्मा।
2: तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
0: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। चा? और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
2: क्यों बोला?
0: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
2: हवा?
0: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
2: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
0: हाँ तो हम पहुंचेंगे तो आपको दिखे जाएंगे, आप बस वेट करिए।
2: अच्छा
4: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
2: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई, अम्मा आप फिकर क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
4: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
2: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
4: आजादी मिलने का नहीं, हाँ? जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर, हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे। पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
2: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
4: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
2: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
4: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
2: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
4: हाँ।
2: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, है ना?
4: हाँ हाँ देख देख,
2: ठीक है
4: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
2: फोन आ गया। हाँ हाँ उठाती हूँ। गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ।

0: हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको, हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
1: हाँ बहू, एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
0: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। हाँ मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
1: हाँ हाँ मम्मा, मम्मा आप देख रहे हो,
0: हाँ
1: हम
0: हाँ
1: लोग जो कटोरा लाए थे ना, मैंने
0: हाँ
1: उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
2: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे
0: हाँ
2: हैं।
0: हाँ अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
2: अरे डर रहा होगा ना शायद।
1: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रहा है ये।
0: हाँ पता नहीं कब से प्यासा था, और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम।
0: हाँ
3: तुम लोग आसमान में टंगे हो।
1: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
2: हाँ बड़ा स्वर्ग, स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी हैं, कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ
3: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
0: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों। 15 मिनट का रास्ता पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझिए आप। मतलब हम समझा दें आपको, जमीन आसमान का मतलब यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं। जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
0: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
3: कह तो रहा हूं जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
0: अरे क्या ऐसा बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
2: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो।
0: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं।
1: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हाँ सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रादर दे वर रनिंग, यू नो रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा टू देयर नेटिव प्लेसेस। मामा दे वर एस्केपिंग माइग्रेटिंग।
0: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
1: हाँ टीवी जैसा ही पर एकदम रियल लाइव जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
0: अच्छा
1: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
0: अच्छा
1: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वर्ड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
0: अच्छा
1: जितने वो उस सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
0: क्या,
1: यू नो पापा ने क्या किया,
0: क्या
1: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
0: अच्छा
1: आप देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
0: हैं हाँ हाँ हैरान, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
2: हुआ?
0: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
2: अरे
0: हाँ इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
2: कोई बात नहीं कोई बात।
0: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो
3: हाँ हाँ बोलो क्या हुआ।
0: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
3: नहीं नहीं आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो

0: लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था।
1: ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
2: आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है, और वो भी जागते हुए।
1: हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है,
0: कल्पना से भी परे, पर हकीकत जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है।
1: अरे जानती हो, हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है। हाँ। काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
2: क्या?
1: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
3: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
4: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
1: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
4: हाँ हाँ
3: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
4: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
3: अरे
4: मर
3: नहीं
4: जाएगा।
3: दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
4: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
3: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
4: हाँ,
3: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है, ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
4: हाँ।
3: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
5: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई,
1: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
5: बिल्कुल।
1: उनको उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
5: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। नहीं, ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी।
5: बस बस बस, शुरू हो गया ये, इनको मौका मिला गुड़िया, और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो, और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
3: क्या मम्मी पापा, आप भी ना? अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना? हाँ। ओ नो, देखो ना, बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
6: गुड़िया,
3: अरे आप जाग रही हैं?
6: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
3: इज इट? क्या बात है,
6: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
3: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला, अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का, और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ? ओहो, भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली, और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता, ओह मैं कह सकती हूँ नानी की भूरे बड़ा खुश है,

0: और नानी बूढ़ा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
1: बिल्कुल खुश।
0: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
1: हाँ बेटा जरूर आएगी।
0: तो ठीक है आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
0: हाँ।
2: तो जानती हूँ मैंने क्या किया?
0: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया।
0: हाँ?
2: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
3: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है!
2: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
2: बंगाली संदेश?
0: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
2: तुम मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: वाओ यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और दे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी, निर्देशक अमरकांत दुबे और

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गए।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, शाम के 4 बजे हैं, अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती कार्यक्रम।

0: कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन के दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
3: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
2: जी,
3: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे, और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
2: जी,
3: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है, फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी,

0: उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की है, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री। तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट को मैंने
1: को
0: दोनों
1: मिलाया है।
0: मिलाया है, और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख। तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे, और काफी ये इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को।
1: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों
0: जी
1: की, और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफबीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रहे ये फिल्में बनाने के?
0: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री हैं अभी,
1: जी
0: उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी,
1: जी
0: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना
1: नहीं,
0: चाहता है, और जो अमीर हैं वो अपनी क्लास कॉन्शियस हैं, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में
1: जी
0: जाना चाहता है ये, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है। लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं,
1: सबसे बड़ा
0: सबसे
1: संदेश।
0: बड़ा। जी
1: तो ये एक बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था।
0: जी
1: तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहाँ तक पहुंची होंगी फिल्में, आप क्या सोचती हैं एक निर्देशक होने के नाते?
0: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म NFDC की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब OTT पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
1: जन जन तक
0: जन
1: पहुंची
0: जन
1: है।
0: तक पहुंची है OTT की मेहरबानी से।
1: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे,
0: नहीं, कलाकार अच्छे हों, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है,
1: जी
0: करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं
1: एक मार्केटिंग बहुत जरूरी
0: मार्केटिंग
1: है
0: के
1: आम
0: लिए।
1: तक
0: जी
1: पहुंचने के
0: जी
1: लिए। तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है, तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
0: मुझे अलग अलग तरह का मूड के हिसाब से मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो, और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए, और फिर आपके मूड पे भी है। कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना। बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा इंडियन में, अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे
1: और
0: हैं,
1: कोई
0: लेकिन
1: लाउड सिनेमा नहीं रहा
0: बिल्कुल
1: है, इनका
0: नहीं।
1: नहीं
0: और
1: है
0: आप और हमारे इर्द
1: कहानियां
0: गिर्द की
1: ताने बाने।
0: कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो हैं हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है।
1: चलिए, तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर बात
0: जरूर
1: को आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे।

सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहा?

0: कहानी। ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है वो चूंकि इतिहास है, तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी मैं एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को
1: जी
0: कहते हैं वामा।
1: जी जी
0: तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थीं उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह के जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं।
1: जी तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
0: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
1: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
0: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केयरने में मुझे लगता है कि मैं काफ़ी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ
1: जी
0: और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो
1: जी
0: पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉल्स्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
1: जी, जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है। स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को
0: जी
1: जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा, तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही हैं तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
0: जी कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुँच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियाँ हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएँ हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएँ हैं, अलग अलग समस्याएँ, ढेर सारी समस्याएँ, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगी कि स्त्री के पक्ष में हूँ मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं
1: नहीं
0: हूँ,
1: हूं।
0: मैं उसके विरोध में नहीं हूँ,
1: जी जी
0: क्योंकि संसार दोनों से चलता
1: जी
0: है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये, पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नज़रों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मोजी बोलते थे, वो
1: जी
0: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मोजी, आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी।

0: श्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: नहीं, देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की ज़रूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत ज़रूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूँगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
1: है, दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो, ये होना
0: वहाँ
1: चाहिए।
0: उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए
1: जी।
0: अपने निर्णयों को लेना सीखेगी, जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहाँ तक सहमत हैं? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहाँ कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है
0: जी।
1: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज़ बोलना चाह रहे हैं आपके, मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज़? इसके तो मैं खिलाफ हूँ। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज़, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से ग़ुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीज़ें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब, तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहाँ पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पुरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है ये, तो पुरी साहब करेंगे? पुरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का ऐड है? बोले सिगरेट का। तो पुरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं पुरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पुरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूँगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पुरी साहब अगर आपके कहने से नहीं पियेंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं, और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हों या ना हों, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की

0: जिंदगियां जो हैं आपने स्टेक पे लगा दी हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का गीत है
2: जाने वालों

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआत की, बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद?
1: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
0: मधुबाला
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज़्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी, लेकिन उनकी खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए घातक।
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी है, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
0: बहुत सुंदर
1: जी,
0: आंखें बोलती थी उनके
1: जी,
0: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका
1: परफॉर्मर। मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं। वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
0: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
1: निर्देशक
0: है,
1: कितना स्ट्रॉन्ग है अपने काम में।
0: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
1: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अनुभया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
0: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
1: बहुत अच्छी,
0: बहुत ही संचिता कलाकार है
1: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका, और मेहनत करती है, चीज़ों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से पूछते हैं
0: जी,
1: गांव में तो नहीं रहे हुए होते।

0: तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूँ क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है। तो वो ख्याल रखना, वो
1: बहुत
0: निर्देशक का
1: जरूरी
0: भी
1: है।
0: जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए, थोड़ा कमजोर हो जाए, तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने अच्छे।
1: स्टैब्लिश कलाकार हैं,
0: जी
1: एक
0: जी
1: अच्छे और परिपक्व कलाकार
0: जी
1: हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें
0: जी
1: कि जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर
0: जी
1: कि ये क्या एक्टिंग कर रही
0: कमजोर
1: है,
0: नहीं पड़े ये
1: कमजोर
0: अपने
1: नहीं
0: अपने
1: पड़े,
0: किरदार में।
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है।
0: जी
1: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, में लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं।
1: बहुत सुंदर गाना है,
0: जी
1: चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के।

0: रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में। बहुत ही सुंदर उसका
1: हाँ
0: शीर्षक है,
1: यूं गुजरी
0: गुजरी
1: है अब
0: अब
1: तलक।
0: तलक।
1: जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पूरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड। तो उसमें मेरे भाई, मेरी माताजी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था। आपको एक कोना चाहिए जहाँ आप रो सकें, जहाँ आप कथारसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं, कि एक एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे,
0: जी
1: उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको। फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
0: जी
1: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी, मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे, थिएटर कंपनी के बाबूजी की, जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थीं, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थीं, स्टेज पे कमाती थीं, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थीं वो।
0: जी
1: तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीज़ें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं वो, उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष, के इतने अमीर माता पिता के संतान होके आज देखिए, जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई,
0: जी
1: भुखमरी आ गई, है
0: जी
1: ना,
0: बिल्कुल
1: सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
0: काफी चर्चित रही ये किताब, और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक
1: जी
0: किताब रही ये,
1: जी
0: यूं गुजरी अब तलक। और उसमें मुझे लगता है कि हमने
1: साहित्य
0: आपको
1: तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10
0: में
1: बुक में लिया।
0: शामिल किया,
1: जी
0: और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी, आगे भी आप यूं लिखती रहें, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही हैं। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
1: जी

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूँ, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूँ तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस

0: लगता है कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे,
1: हाँ, नहीं, तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
0: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होके आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीज़ें जब आपने की होती हैं, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहाँ के लिए पढ़ना और गुनना बहुत ज़रूरी है खुद को। तो बॉम्बे टॉकीज़ में आज सीमा जी, आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहाँ से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
1: जी, तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का।
0: जी, एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, LP का म्यूजिक है, न जा अब कहीं न जा,
1: दिल के सिवा,
0: दिल के सिवा।
1: क्या बात है।

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत। नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह प्रमाण है कि जब भारत के युवाओं के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों का समर्थन मिलता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में परिवर्तनकारी अध्याय की शुरुआत है। श्री बिरला ने कहा कि विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने अपनी बढ़ती तकनीकी उत्कृष्टता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगॉव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। ये प्रतियोगिता सभी नागरिकों के लिए है। प्रतिभागियों को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यूफी को चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आपने सुना नागपूजा फिल्म से ये भजन जिसे गाया था सुमन कल्याणपुर ने। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं दुर्गा फिल्म से कार्यक्रम का अगला ये भजन।

अभी आपने सुनी दुर्गा फिल्म से ये प्रस्तुति। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से कार्यक्रम में। अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे की आवाज़ में, भक्त कबीर फिल्म से।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे भजन फिल्मों से। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज रहेगा सचिव फोन इन कार्यक्रम और इसमें आज आप सुनेंगे मेरी पसंद और उसमें आप सुनेंगे हेलो जीनियस। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आप सभी को डायल करना होगा 01-892-224-391 नंबर और इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और ढेर सारी बातें कर सकते हैं।

युवा मंच कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को, भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सकुशल होंगे अपने अपने घरों में। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज है सजीव फोन इन कार्यक्रम और इसमें रहेगी मेरी पसंद। और मेरी पसंद की जो फिल्में हैं वो हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बोल बच्चन बोल, आशिकी, आराधना, भारत, चांदनी, दबंग, फैशन, दिल तो पागल है। ये सभी फिल्में हैं जिनमें से मैं आपको सुनवाऊंगी आपके फरमाइश पर गीत। पर उससे पहले मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहूंगी कि साथ ही साथ आपको बनना है हमारे कार्यक्रम का हेलो जीनियस। मैं आपसे पूछूंगी कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही आसान होंगे, आपको देना होगा उनका आंसर और बनना होगा हमारे कार्यक्रम का हेलो जीनियस। तो घबराइएगा मत, नहीं भी आप अगर रिप्लाई कर पाएंगे उनका तो अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर वही क्वेश्चंस पूछेंगे, दोहराएंगे, जो कि रहेंगे आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और हम सभी नियमित श्रोताओं को बता दें कि जो श्रोता हमसे नियमित रूप से जुड़ते हैं वो इस कार्यक्रम में थोड़ा सा ब्रेक दें, क्योंकि ये हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम है और उनको ही इस कार्यक्रम में जुड़ना है। हमारे युवा कॉलर

जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए सभी कोशिश करिए और हम तब तक आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिकल ब्रेक। आइए आनंद उठाते हैं।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले।
1: मैम, मैं सानिया बात कर रही हूँ, पालमपुर से। हाँ
0: सानिया पालमपुर से।
1: जी।
0: कौन सी क्लास में पढ़ते हो सानिया जी?
1: 9th क्लास में।
0: 9th क्लास में। तो आपने कार्यक्रम तो सुन ही लिया होगा। हमने बताया है कि हमारे कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपसे कुछ एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप तैयार हैं?
1: हाँ जी।
0: चलिए, तो बताइए, हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जी का नाम बताइए।
1: क्या बोलते हैं,
0: कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सा समय ले लीजिए। अभी आप सर्च मत करना, पर
1: श्री शिव प्रताप शुक्ला।
0: अच्छे से सोच लीजिए। अच्छे से सोचिए, वो पहले थे कि अभी हैं? चलिए सोच के बताना, पर ये बताइए कि जो फिल्में बताई हैं उनमें से कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैम, कौन कौन सी मूवीज आपके पास? मैंने रेडियो भी ऑन किया था।
0: बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बोल बच्चन, बोल आशिकी आराधना, भारत, चांदनी, दबंग, फैशन।
1: बद्रीनाथ की दुल्हनिया का टाइटल सॉन्ग।
0: कौन सा गीत?
1: बद्रीनाथ दुल्हनिया का टाइटल ट्रैक।
0: चलिए हम आपको सुनवाते हैं, पर अगली बार जब आप आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, ठीक है? हाँ जी, तो आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहे आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार जी।
1: मैं सुनीता बोल रही हूँ। मैम रोली डिस्ट्रिक्ट उन्ना तहसील रोली से।
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप?
1: मैं क्लास में नहीं पढ़ती, मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: तो घर में कोई बच्चा है जो पढ़ता हो,
1: मैम
0: उससे बात करवाइए।
1: अभी तो वो ट्यूशन पे गया है, कोई स्टेडियम में गया हुआ है। फिलहाल मैं ही हूँ, मेरे सुबह भी कॉल लगा था, मैंने तो वैसे ही ट्राई किया, लग गया एकदम से।
0: क्योंकि ये बच्चों के लिए, युवा साथियों के लिए कार्यक्रम है, तो हमने पहले भी सबसे प्रार्थना करी थी। तो
1: सॉरी
0: चलिए,
1: मैम, मेरे को
0: नहीं
1: मैंने
0: नहीं ऐसा
1: फैमिली
0: कुछ
1: को
0: नहीं
1: तो
0: है। चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपने फ़ोन कर ही दिया है तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ मैं आपसे।
1: हाँ जी मैम, देखो पूछो, देखते ट्राई करते हैं।
0: चलिए बताइए, तो हमारे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा कब मिला था, कुछ बताएंगी आप?
1: 1971 को।
0: चलिए, ये तो बहुत सही आपने बताया, लेकिन साथ में तारीख भी बता देते तो अच्छा रहता।
1: तारीख मैम शायद अप्रैल में है शायद। अप्रैल
0: थोड़ा सा जोर डालिए। चलिए, पर खुशी हुई कि आपने थोड़ा सा, आधा सा क्वेश्चन जो है वो सही बताया। 25 जनवरी सन 1971 को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला था।
1: हाँ जी हाँ जी मैम।
0: तो हेलो जीनियस तो हुए आप हमारे कार्यक्रम के, पर आधे अधूरे हुए। ठीक है
1: चलो कोई
0: जी
1: बात नहीं, उम्र के हिसाब से तो सही है मैम।
0: जी। तो चलिए बताइए,
1: मैम
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: वो अपनी मर्जी से सुना दो आप, इसकी कोई मतलब इच्छा नहीं है गाने की ना, मतलब कौन सुनना है, आप जो सुनाती है अच्छा सुनाती है।
0: चलिए, वैसे आप आज किसके साथ जुड़े हैं, कुछ बता सकते हैं?
1: मैम मैं धर्मशाला से कॉल को किया है फोन मैंने।
0: अच्छा जी, चलिए सारे कार्यक्रम सुनते हैं आप।
1: मैम मैं मतलब सही से बताऊं, मैं कुछ दिन से सुन रही हूँ कि मेरा हमीरपुर क्लियर नहीं आ रहा ना, जहाँ पे
0: जी
1: बरसात के कारण शायद, फिर उस 1.5-2 महीना हो गया तभी आपका धर्मशाला चल रहा है जहाँ पे ना आप।
0: चलिए, आप कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से ध्यान रखिएगा, युवा मंच सिर्फ युवा साथियों के लिए है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है।

0: हम अपने युवा साथियों को बता दें कि आपको डायल करना है 01892224391, ये नंबर जिस पर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है वो है मेरी पसंद, और आज है सजीव फोनिन, और इसमें हम हेलो जीनियस भी कर रहे हैं साथ की। आपको हमारे क्वेश्चंस के कुछ रिप्लाई करने हैं, तो बड़े आसान से हमने आज आपके लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लाए हैं, तो चलिए जुड़िए। हेलो, नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: लक्की बात कर रहा हूँ।
0: लक्की कहाँ से?
1: देहरी से बात कर रहा हूँ, फतेहपुर से।
0: जी, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ चुका हूँ।
0: युवा मानते हैं अपने आप को? चलिए, तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि हिमाचल

0: हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है?
1: सबसे छोटा जिला चंबा।
0: नहीं, थोड़ा सा जोर डालिए अपने दिमाग पर। चलिए ये बताइए कि हमारे राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? राज्यपाल कौन है हमारे हिमाचल प्रदेश के?
1: हेलो,
0: हेलो,
2: मस्ते जी।
0: नमस्ते जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
2: कौन
0: सी क्लास?
2: गुड,
0: तो आप हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे, जनरल नॉलेज का जो हमने क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए जल्दी से कौन है हमारे राज्यपाल?
1: अगली बार मैं तैयारी कर रहूंगा पूरी, तो बताओ।
0: जी, तो ये बताइए कि चलिए आपने कार्यक्रम में फोन किया है तो कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: कौन सी फिल्म है आज?
0: आज अभी हमारे पास हैं बोल बच्चन बोल, आराधना, भारत चांदनी, दबंग फैशन।
1: चांदनी का सुना दीजिए।
0: कोई स्पेशल या अपनी मर्जी से?
1: अपनी मर्जी से सुना दीजिए।
0: चलिए आप दोनों अपना नाम बताइए एक बार फिर से।
1: जी मैम, मेरा नाम लक्की है और इसका नाम है जो अर्ध है, जो भतीजा है मेरा।
0: चलिए जी, आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप युवा मंच कार्यक्रम में जुड़े, और अगली बार जब आप शनिवार वाले दिन होता है हेलो जीनियस, तो इसमें आप पूरी तैयारी करके आएंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है जी,
1: मुझे पता नहीं था, मेरा अभी फोन ऑन किया तो मैंने एकदम से फोन कर दी, मुझे
0: कोई
1: पता नहीं
0: बात
1: था।
0: नहीं, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे हल्की फुल्के हम ऐसे रखा है बच्चों के लिए ना, क्योंकि ये स्पेशल युवाओं के लिए है, तो थोड़ा सा टेस्ट करते रहते हैं हम अपने युवा साथियों को कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम इतनी जानकारियाँ देते हैं तो क्या वो उन जानकारियों से कुछ सीखते भी हैं कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज का होना भी बच्चों में बहुत ज़रूरी है। आप कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद। सुनते रहें आकाशवाणी धर्मशाला।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताइए अपना।
1: मेरा नाम क्रिश है।
0: क्रिश, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कुछ नहीं करते क्रिश? हाँ जी, चलिए हम नहीं भूले हैं तो हम आपको नमस्कार करते हैं, ठीक है?

0: चलिए बताइए, आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? बहुत सिंपल सा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? जोर से बोलिए थोड़ा। चलिए बताइए, हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? हाँ जी, फिर बोलिए।
1: 12।
0: क्या बात है, नाम बताइए अपना जल्दी से। हाँ, जोर से बोलिए। तो आप आज के हमारे इस कार्यक्रम के क्या हुए, हेलो जीनियस, क्योंकि आपने एकदम से हमारे सवाल का सीधा और बड़ा सही उत्तर दिया है। कौन सा स्कूल है आपका? क्या बात है, मान गए उस्ताद, आज क्या हैं आप हमारे कार्यक्रम के हेलो जीनियस। तो चलिए जल्दी से बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगे आप? हेलो, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है बच्चे।
1: कौन सी फिल्म है आज?
0: आज हैं बची हैं हमारे पास आशिकी, आराधना, भारत, दबंग, फैशन,
1: दबंग का कोई भी अच्छा सा।
0: कोई भी अच्छा सा। चलिए एक बार फिर से नाम बता दीजिए अपना जल्दी से।
1: मेरा नाम क्रिश।
0: क्रिश, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप आज के हमारे कार्यक्रम के पहले हेलो जीनियस हैं पूरे पूरे। ठीक है,
1: ठीक है।
0: जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। यूं ही सुनते रहें आकाशवाणी धर्मशाला।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
2: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa. कार्यक्रम युवा मंच में आप सभी का हम फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज युवा मंच कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सचिव फोनिन और इसमें आज के दिन होता है मेरी पसंद और उसमें हेलो जीनियस हम लेते हैं। तो आज के हमारे हेलो जीनियस जो बने कार्यक्रम के वो हैं क्रिश और उनकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं दबंग फिल्म का ये गीत।

0: एक बार फिर से सर्च कीजिए और तीसरी बार फोन कीजिए, ठीक है?
1: आपका नाम क्या था, बच्चा नाम बोल रहे आप?
0: हाँ जी, एक बार फिर से सर्च करना आप इस क्वेश्चन को, ठीक है जी?
1: मुझे गलत है।
0: आपको हम बता दें कि शनिवार वाले दिन हमने रखा होता है हेलो जीनियस कार्यक्रम। अगले शनिवार को आप फिर फोन कीजिएगा और तब तक इसका रिप्लाई अच्छे से ढूंढिएगा, ठीक है जी? जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद।

0: हेलो हेलो, हाँ
1: हेलो,
0: जी, नाम बताइए अपना।
1: मेरा नाम कृतिका है। कृतिका,
0: जी, कृतिका,
1: हाँ जी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं? जगह का नाम भी बताइए।
1: मैं कांगड़ा। हाँ
0: कांगड़ा से। और कौन सी
1: जी,
0: क्लास में पढ़ते हैं?
1: मैं नाइन्थ।
0: क्या बात है, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि यंग जनरेशन सारी जुड़ रही है हमारे इस कार्यक्रम में। आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि हेलो जीनियस कार्यक्रम में आपने ज़रूर जुड़ना है और ये होता है सैटरडे वाले दिन, ठीक है? चलिए, आपको हमारे छोटे से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन का रिप्लाई करना होगा, करेंगे?
1: राज्यपाल
0: चलिए बताइए, राज्यपाल का नाम बताइए आप हिमाचल प्रदेश के।
1: को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
0: ये तो गलत बात है, आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी सीखनी चाहिए। गवर्नर, हेलो,
1: बताती हूँ।
0: नहीं, नेट से नहीं, सर्च नहीं करना आपने। आपकी आवाज ना स्पष्ट नहीं आ रही है, आप दोबारा कॉल कीजिए, ठीक है?
1: ओके,
0: जुड़ने के लिए धन्यवाद।

0: कार्यक्रम युवा मंच इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। और शनिवार वाले दिन रहता है सजी फोनिन मेरी पसंद, और इसमें हमने रखा है हेलो जीनियस कि आपको छोटे छोटे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उनका रिप्लाई करना होगा। गाना तो हम आपको सुनवाएंगे ही सुनवाएंगे, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी हम सफर वर्षा। तो चलिए अगले श्रोता से बात करते हैं। जब तक हम बात करें चलिए जुड़ ही जाते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, जल्दी से अपना परिचय दीजिए।
1: मैंने अभी पहले कॉल करा था, कृतिका।
0: कृतिका, तो अभी आपने सर्च कर लिया होगा तो हम आपके रिप्लाई जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए आप बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
1: कोई भी लगा दो।
0: कोई भी?
1: हाँ,
0: तो अगली बार शनिवार वाले दिन आपने जरूर फोन करना है और तैयार होके आना है, ठीक है? मेंटली पूरे प्रिपेयर होके आना है आपने कि आपकी जो दोस्त है उसने आपसे खूब सारे क्वेश्चंस पूछने हैं।
1: ओके
0: कृतिका, आप कार्यक्रम से जुड़े उसके लिए धन्यवाद।

0: हेलो, जल्दी से बोलिए, हमारे पास समय बहुत कम बचा है। नाम बता दीजिए, बाकी हम कोई बात नहीं कर पाएंगे।
1: मैंने फिर से फोन किया है। मैंने फिर से मैडम ढूंढा क्वेश्चन आंसर, पर बादशाह के जो राज्यपाल हैं श्री श्री प्रताप शुक्ला सिंह जी।
0: चलिए फिर से अपनी नॉलेज बढ़ाना और अगले शनिवार को फिर से फोन करना। जुड़ने के लिए धन्यवाद। युवा साथियों, अब घड़ी की सुइयां आपकी दोस्त वर्षा टोश को ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो चलते चलते आपके लिए एक पहेली छोड़ के जाती हूँ। अगले शनिवार तक आप इसका आंसर जरूर ढूंढिएगा। तो पहेली है, धान साहब की बेटी खान साहब को बुलाती है, आना है तो आइए, नहीं तो शीतलगढ़ को जाती है। तो इस पहेली का जवाब हम लेंगे आपसे अगली 25 तारीख को शनिवार वाले दिन हेलो जीनियस में। तो अब अपनी दोस्त वर्षा टोश को आज्ञा दीजिए, लेकिन आज्ञा लेने से पहले कहना चाहेंगे कि मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, ऐसे में आप अपना और अपनों का और ख़ासकर बच्चों और बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलती हूँ अगले कार्यक्रम में, फिर से मिलूँगी। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस जानकारी और मनोरंजक कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया सुनील कुमार ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अपनी दोस्त वर्षा टोश को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सांझ। शाम 6:30 का प्रसारण समय रहेगा कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां दा। कार्यक्रम किसानवाणी आप सुना करते हैं शाम 7:10 पर। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस रात्रि 8 बजे सुनवाया जाएगा। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे व 7:45 पर प्रादेशिक समाचार व रात्रि 9:15 पर हिमदर्शन कार्यक्रम भी आकाशवाणी शिमला से ही रिले किया जाएगा। और अब एक नज़र आकाशवाणी दिल्ली से शाम की सभा में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे हिंदी में समाचार 7:05 पर, अंग्रेजी में समाचार रात्रि 8:45 पर, समाचार संध्या 9 बजे न्यूज़ एट 9, रात्रि 9:30 पर चित्र भारती व रात्रि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार व 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से। आज शाम को शेष

प्रसारित अरिले होने वाले कार्यक्रमों की। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह

0: अमी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 72nd National Film Awards were announced today. The Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. The Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. In the non-feature film category, Shivpal Singh Kang will get the Best Music Direction Award for Parat 41 Degree Chaya Magavar. Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. The Best Non-Feature Film is Bhangar, directed by Sumira Roy. India's first privately developed orbital rocket Vikram-1 under Mission Agman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram-1 under Mission Agman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
2: Pawan, Bharat aur puri team, bahut bahut badhai. Do kaam kiye hain. Ek to aasman mein naye pauze gaad diye hain aur dusra जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also congratulated Team Skyroot on the successful launch of Vikram-1. The minister said the mission marks a major milestone for India's expanding private space sector. In Gujarat,
3: FM band 103.4 MHz par hum Akashwani ke Dharamshala ke indra se bol rahe hain. आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरमय सांझ। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा टोच। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति होटल फिल्म से

होटल फिल्म के इस गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने और संगीत दिया था उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम था होटल और आवाज़।

से थी आशा भोसले और मनहर उत्तास की सुरमय सांझ कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रियों से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कालापानी फिल्म से।

0: कालापानी फिल्म के इस गीत की शब्द रचना की थी मशरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था एसटी बर्मन ने। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। सुरमई सांझ कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। फौरन हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत।
1: 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
3: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa.

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के बोल लिखे थे मीर तकी मीर ने और संगीत दिया था खय्याम ने। फिल्म का नाम था बाजार। सुरमई सांझ कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनवाने से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है और इस समय आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 MHz पर और कार्यक्रम चल रहा है सुरमई सांझ। इसमें अब हम आपको सुनवा रहे हैं लम्हे फिल्म का ये गीत।

लम्हे फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। इसमें आज रहेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम।

0: किसानवाणी कार्यक्रम सुना कर दे सारे किसान बागवान भाई बहना जो लंबरदार दी राम राम
1: जी। लंबरदार जी राम राम कन सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई बहन सारे श्रोतियों जो जेड़ा सै दस दईए कि अज अहां
0: फोन इन कार्यक्रम
1: हाँ फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम ले करी अहां टियाले पर अज अहां हाजिर हैं तो सारे श्रोतियों ने सारे ने किसान बागवान साथियों सोगी अहां दी गुजारिश रहनी है कि जड़े जड़े अहां अज लोग गायक ले करी आए हैं उन्होंने ताइए तो जरा फोन करना
0: दसना चाहते हैं गायक का
1: ना। हाँ बिल्कुल कने जरा फटाफट अपना ना पता दसना है कने फिर जरा तो अपनी पसंद का गीत सुनी पाना है ना 0182-224-391 जरा टियाले का फोन नंबर है।
0: बिल्कुल
1: कने तो जो अहां दस दईए कि अहां वाल अज जड़े कौन कौन लोग गायक हैं तिना विच हैं इंदर राज करनैल राणा लक्ष्मी देवी निम्मो चौधरी वर्षा कटोच मीनाक्षी देवी राज प्रभाकर कने बिने अबरोल
0: जी
1: तो जी ये तो थे जड़े सर लोग गायक कने फिर तो जड़ा सर टियाले का फोन नंबर हाँ अपने सुनने वाले दस दईए कि 0182-224-391 है ना।
0: बिल्कुल वैसे तो साढ़े किसान साथियों साड़ा फोन नंबर है ही
1: हाँ जी।
0: तो फोन करके अपना मनपसंद का लोकगीत जड़ा सर सुनी सकते हैं
1: जी।
0: तो इस दे बाद देखा भी पहले तो किसान मतलब मौजा ग्राई दी जो कार्यक्रम है
1: हाँ जी
0: इस अहाँ अपने किसान साथियों ये दसीए कि भाई अजकल धाना का काम जड़ा है उत्तड़ियों ही बचे है बाकी तो साढ़े किसान साथी जड़े हैं सह लगभग लगभग जो अपने काम कार जो पूरा करी बैठे हैं।
1: हाँ जी
0: तो किसान साथी देखा भी
1: एक श्रोता अहां करने जुड़ना चाह देना ना कर देने ये ना करने गलबात
0: जी।
2: स्टेप इनटू द
0: हेलो
3: हेलो
0: जी नमस्कार जी
3: नमस्कार
1: जी अपना नाम दसा करना घर कतान तो जी घर कुतन तो
3: बसरा।
1: अच्छा जी तो
3: उत बंदा मिले तो
1: है हां जी
3: नौ बंदा मिले नौ बंदा।
0: अच्छा जी अच्छा बड़ी खुशी वाली गल है कि ना भाई आशा करते भाई साड़ा संबंध जड़ा सा

0: हाँ बढ़िया रहेगा।
1: हाँ जी ठीक
0: ता तो हाँ आज दसा कौन दिया लोकगीत जड़ सा तो हाँ सुनना चाहेंगे।
1: निम्मो चौधरी सुनाया निम्मो चौधरी का
0: निम्मो चौधरी है तो आज तक कहाँ लोकगीत पहुँचाना तो हाँ ये दसा पे फसल के काम कारा ते बेले
1: ठीक
0: हुई
1: है
0: है।
1: बड़ी बड़ी
0: हेलो
1: हाँ
0: जी शुक्रिया जी फोन करने का। यहाँ

0: हेलो
1: जी, नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, कौन साहब बोला दे कने कुथु ते बोला दे ने?
1: मैं जी अशोक कुमार ओड़ा से लग दे
3: जी। अशोक जी, स्वागत है तुहांदा कार्यक्रम च। होर सुना जी, क्या काम काज कर दे?
1: बस जी, मैं मंजूरी है सारा जी कने खेती बाड़ी।
2: चलो बड़ी बढ़िया गल है जी, खेती बाड़ी ते बड़ी के हां बोल गए बे, अपने मनपसंद कम्मे दे राजे कौन हो सकदे, है ना जी?
3: जी तो तुहां अज तुहां दा फोन टियाले पर लगी गया कार्यक्रम च। अहां वाल जेड़े लोक गीत हैं, गायक हैं, सह हैं इंद्रराज, कन्या राणा, लक्ष्मी देवी, निम्मो चौधरी तुहां सुना करते हैं, वर्षा कटोच, मीनाक्षी देवी, राज प्रभाकर, कहना विनय अबरोल,
2: तो तुहां कुछ दस लोक गीत सुनना चाहेंगे
3: जी? तुहां दे सिद्ध बाड़ी तुहां दे रेडी सेट पर भेजा करते हैं तुहां दी पसंद। फोन करने ताईं शुक्रिया जी,
1: धन्यवाद।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: जी तो फिर तो जड़ा सा कार्यक्रम च स्वागत है
2: जी।
1: कने कार्यक्रम है मौजा ग्राएं दियाँ, कने फोन इन फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम ले करी अज अहां टियाले पर हाजिर हैं। इसी बिच एक श्रोता अहां सोगी जुड़ीए न करदे न इन्हां कन्ने गलबात
2: जी।
1: हेलो,
3: हाँ जी,
1: जी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी,
1: जी स्वागत है कार्यक्रम च। अपना नाम दसा जी।
3: मेरा नाम

0: संदीप कुमार जी कोटला
1: कन्ने घर कुदून तुहां दे?
0: जी।
1: अच्छा कोटला है तुहां दे घर है
2: संदीप
1: ना।
2: कुमार जी तुहाड़ा साडे कार्यक्रम च स्वागत है। कन्ने ये दसा पे अज कौन दिया लोक गीत सुनना चाहंगे?
0: कोई भी सुनाई दिया सर।
1: जी अहां वाल जेड़े लोग गायक है ना तिना विच तुहां जो अहां आप
2: एक अपनी पसंद आ तुहाडे तक पहुंचा करदे ने प्यारा दिया लोक गीत
1: जी।
2: शुक्र तुहाडा फोन करने ताई धन्यवाद।
0: ठीक है जी, धन्यवाद।

0: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम च। कार्यक्रम में मौजा ग्राई दियां कना जी, अपना नाम दसा कना अपना पता।
0: देखो जी, मौजा ग्राई दियां ना ही ऐसा रखिया कने, इस टाइम में मौजा ही मौजा लगी हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी जी, ना पता दसा जी अपना फटाफट।
0: बस मैं सराय थे बोला था, जय कण कने मिंजो राज प्रभाकर दा गाना सुनाई नहीं होना बढ़िया दिया।

0: into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ नेक्सा। अपग्रेड

0: नमस्कार। कौन साहब बोला दे कने कुछ तो बोला दे ना।
1: मैं बोल रहा जी पंजाब तो पिछला
0: जी जी
1: पिछला
0: महेंद्र सिंह राणा जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: हाँ
0: स्वागत है जी कार्यक्रम च। ठीक ठाक है ना?
1: जी बहुत बढ़िया जी तुहां सुनाओ क्या हाल ने।
0: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
1: आज तो
0: मैं
1: हाँ ट्याले पर फोन किया है, दसा जरा कौन दिया लोग गीत सारा
0: सुन।
1: बारिश हो रही है
0: जी
1: हाँ जी जी हाँ
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल बारिश हुआ दी जी।
1: तो इतो तो हुआ नहीं कर बड़ी गर्मी है बड़ी मुश्किल से। हाँ
0: चलो जी जी प्रकृति जी रखे थी रहना पौना। पर भाई आज तो हाँ साढ़े ट्याले पर फोन किया, कौन दिया लोग गीत सुनना चाहेंगे।
1: इंद्रराज मीनाक्षी देवी विनय अबरोल का लक्ष्मी देवी।
0: चलो लक्ष्मी देवी तो सुनाई दिया। ठीक है जी, थोड़ा फोन करने ताई बड़ा बड़ा धन्यवाद। कहना थोड़े तक पहुंचा कर दिया
1: धन्यवाद
0: ने
1: जी
0: थोड़ा
1: धन्यवाद
0: मन पसंद आए प्यारा दिया लोक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्रों से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। ये हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानी रुविदे नेमागागी नादी रुविदे नानागागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: एक बार फिर ते किसान वाणी कार्यक्रम सुना करदे मेरे सारे किसान बागवान भाई बहन जो लंबरदार दी तरफ ते राम राम कन। आज मेरे कन्ने बैठे हुए किसान मित्र जी तो अंजो मेरी तरफ ते राम राम
2: जी। स्वागत है सारे दा कार्यक्रम किसान वाणी दे विच।
1: जी बिल्कुल।
2: कन्ने टियाले पर जड़ा सा उन गल्ला बातें चली पौनी है खेत खलिहाना।
1: खेत खलिहाना ही है। देखा भी उरे दे कम्मे ते मेरा इलाका था जड़ा सा बेला हो गया पर ओतड़ी वाले जड़े ने सा राल माल जड़ा सा करा करदे
2: जी। अधिका पिछले का जड़ी बरखा पईयां ना बोलते ना सोने पे सुहागा
1: मारो मार ना किसान मित्र जी मैं दसा सूत मकोड़िया टाका दे जिया बरसाती काम साड़ा चलता ना कने ये कालिया मकोड़िया कने सूत मकोड़े तो क्या गलाना जिया पैर रखते कने सीधी गोली बजदी है ना इन्हें जोर पौंदा कम्मे दा। गल इ है अजकल साड़ा किसान जड़ा है बदिया ते बदिया लाल चौलां दा बासमतियां अपने अपने 100 नंबर परमल जड़ा है वाह कर दे पे बन बन दी खुशबू जड़ी है हुण धान पट्टियां जड़ी है ओवा कर दी है
2: जी।
1: पर दूए पासे मैं तुहानूं इह भी दसगा पे खरपतवार नाशक जड़ा पट्टियां च पा कर दे किसान साथीओ तिस दी मात्रा जड़ी है सै जितनी विज्ञानिक ने दसी है उतनी मात्रा पाने कने जिए सै गलांदे हन कि 15 दिन खेते च नहीं जाना या मिट्टी ने हथ नहीं लगाना है तो तिस दा पूरा सांजो पालन जड़ा सा करना है।
2: हाँ बिल्कुल तो हाँ ठीक लिया दिखा अजकल जी हाँ कई बार ग्रां च भी दिखे या हाँ अपनी भी दिखते कई बार के बोलते ने ये पैरां क्या हुआ हो दूंगा बड़ा तो पैरां च पवा दा राती नींद नहीं पवा दी कोई कुछ कोई कुछ जियां एलर्जी खारिश हो ये सारा कुछ जड़ा सा ये दवाई
1: दी वजह ने कने इस दा जितना घट ते घट प्रयोग करी सकदे। दिखा भई किसान मित्र जी पहले दे साडे बुजुर्ग हुंदे है ना टप्पां भरी रौनक नहीं जांदी थी इन्हां दिनां तां टप्प वेले नहीं रहिंदे थे तेथी अपने अपने पट्टियां पानी बन्निया कने चलिया
2: फिर दिखा फिर निदाई करनी है का थन्ने पुटण पुटदे हे ने हुण दिखा जितनी मशीन आईयां जियां थ्रैशिंग पहले दिन आपू गाणी गाणियां धान चा फणे हुण तो दिखा तां ट्रैक्टर ओदा कहना तां मिंटा च
1: मिंटा सकिंटा मतलब तुहां दिखा वे 10-15 दिन दा काम जड़ा है सै घंटे च वेले। लेकिन मैं तुहानू दसा करदा हां वी हुण आह दवाई दा रिवाज तां हुण चला लेकिन साडे किसान पुराने टाइमे भी कने हुण भी कई किसान जड़े जागरूक हैं सै हले भी अपने जलो आह ऊर लाइंदे या आह मच करिंदे तां उस ते बाद अपनियां खेते जड़ा है सै मतलब अद्धे दी उंगल पानी जड़ा सा अपने खेते च बनाई के रख दे तिस्ते क्या होंदा कि घा नहीं उगदा तां तियां सा अपना खरपतवार नाशक जड़ा नाश जड़ा सा करदे हन तां हां जो भी चाहिदा कि आने वाले टाइम च मतलब अपने खेती बाड़ी जो जैविक तरीके ने करने दे इह नए नए तरीके हन कने तिन्हां ही सांभ संभाली कीती जाए।
2: लंबरदार जी हुण तां दिखा ऐसा दौर आई है बई बीड़ा

0: जो भी जड़ा से खरपतवार नाशी
1: ओ,
0: पा दे
1: बिल्कुल
0: बीड़ा को
1: ठीक रहे।
0: निकलानिया ना,
1: जी,
0: इससे तो हमें दस दिए कि बार बार जड़ा से खरपतवार ज्यादा छिड़काव बीड़ा पर अगर चलो हाँ फलन में या कुछ कताइया कर दे ना, तो इससे क्या बीड़ा भी पोलियां पौनिया
1: बिल्कुल
0: कहीं चलो सह हूं ढेई याद तो वजह यही है
1: जड़ा गली जानी है जल थे जिसका आई है जड़ा गली जानी है तो सह बीड़ पोली हो जानी तीये ही पौनी। कने मैं तो यह बोलगा कि घट तो घट जितना तुम कर सकते दिखा भाई पशुधन तुम घर पालिया है तो बीड़ा जड़िया ने सह उसी तरीके ने घाए बढ़ी के तुम ये करा कने भाई अगर तुम नहीं पालिया तो कुछ होर सी तो जिन्हें पालिया तो नहीं दिया कने जलू अहां तिना बीड़ा पर चलते ना तो कुसी ना कुसी रूप च साड़े चमड़े ने दवाई लगदियां लगदियां तो सानू इससे बचना पौना कने बीमारियां तो दिखा ही करते पे कोई घर ऐसा नहीं रहा जिस च बीमारी ना हो तो सानू ये बीमारियां दा जड़ा जड़ ऐसा यही दवाई है तो सानू बचना चाहिए।
0: दिखा भाई इतना इतना टाइम अस्पताल भी भांदे हैं
1: जी बिल्कुल
0: एक एक बीमारी हर महीने त्रै त्रै चार चार हंडी कड़ी इतना टाइम अपने खेतरे च जी लगाई लिया हुआ
1: बिल्कुल ठीक लाया कने भाई अपना हथे ने उगाया अनाज जड़ा ऐसा तीसरी अगर अहां जैविक तरीके ने ना उगान तो क्या फायदा फिर।
0: हाँ जी हाँ
1: तो जरूर साढ़े किसान साथी जड़े भी अजकल ऊरा लगा करते अपने इस वेले सावधानी पूर्वक ने पानी जड़ा ऐसा रोकी के करी के तो अहां अपनी ये जड़े रसायनिक दवाइया छिड़काव से बची सकते हैं
0: जी।
1: तो इसके बाद दिखा किसान मित्र जी हूँ समय जड़ा ऐसा संझा का अजकल अज भी मैं दिखा करता था कई किसान साढ़े जड़े ने पद्धर डोले च भी ऊर ला करते थे थकी हुआ संझा दी
0: महामाई माता रानी दे चरणा विच हाजरी लगांदे ने कहना उसके बाद फिर जड़ा सा एक उन्नत किसान हो रहा कहना की भेंट वार्ता है ना किसान साथियों।

0: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा हर दिन नोइयां ते नोइयां जानकारियां अहां तुहां तक पहुंचान चाहियो। अहां दे कृषि विज्ञानकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों सोकी कीती गई गलबात होवे, उसी कड़ी विच अज मिंजो मौका मिला कने मैं गया अज शाहपुर दे धारकंडी क्षेत्र च। इस वेले मैं आई पुज्जिया बो वैली, इतों एक जड़े किसान हैं उन्हें कन्ने मुलाकात हुई है जड़े कि ट्राउट मछली का पालन करते हैं करते हैं इन्हें कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना नाम दसा।
1: रणजीत सिंह जी।
0: जी रणजीत सिंह जी, ट्राउट मछली का फार्म है तो हाँ ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, किन्ना के अरसा हुई है ये काम करते?
1: भाई ये 2 साल ते हो गए।
0: अच्छा, 2 साल ते है ना।
1: जी
0: जी। तो इस वेले जो मैं दिखा करता कि तुहाडा ये जड़ा फार्म है इस च यानी कि ये 2 खाने वाला है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, तो यानी कि 2 खाने ने तो इस च कितना की मछली का उत्पादन हो जाता?
1: सर 1 खाने 4000 पीस आ जाता छोटा बच्चा।
0: अच्छा,
1: 2 खाने 8000।
0: 8000 है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, तो थोड़ा जे अपने फार्म के बारे च दसा कि जियां चल तुहां ये फार्म बनाया हा तो मछली पालन का काम तुहां शुरू किया, इससे पहले तुहां जियां कुछ सिखलाई वगैरह भी ली जियां मछली पालन?
1: हाँ जी, हाँ जी, ट्रेनिंग ली।
0: अच्छा, कुतू हुई है
1: ट्रेनिंग? सर अपने इत्थी हुई, अपने पंचायत करी हुई।
0: अच्छा
1: जी जी।
0: कने जेले तुहां ये फार्म बनाया ता विभाग द्वारा कुछ मिला जियां अनुदान?
1: हां जी, हां जी, अनुदान राशि मिली।
0: अच्छा
1: जी।
0: कदी एदा जेड़ा बनाने दा एदा स्ट्रक्चर वगैरह हसा है कोई नक्शा वगैरह बनदा पहले कि?
1: नक्शा तो अपने विभाग वाले दसिंदे है ना।
0: हां,
1: इतना बाई इतना दा बनाओ
0: जितनी की जमीन होवे ना।
1: हां जी, जमीन दे हिसाब ने वो सर्वे करदे, उसके बाद दसदे कि उस हिसाब ने बनाओ।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: जी। रणजीत जी, इस ते बाद गल करते हैं जियां बीज होंदा ना
1: जी जी
0: मछलियां दा,
1: हाँ जी,
0: कुदों ते लैंदे तो? हां
1: सर, बीज तो अपने अपने अलग अलग हचरी ते लैंदे। हां, स्टार्टिंग ते मैं पालमपुर ते लेके आया।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो जिनी उस ते बाद हुण कुदों लैंदे कने?
1: दोबारा तो अपने अपने अपनी चॉइस है, जोगिंद्रनगर ते भी ले सकदे।
0: अच्छा।
1: अपने सरकारी बने ने।
0: हां,
1: उत्थों ते भी ले सकदे।
0: अच्छा
1: हाँ जी।
0: नहीं जल मन लिया पालमपुर ते बीज तो हां आणना है, तां की आणदे पाए की सी कोई बाल्टी वगैरह च?
1: नहीं, टंकी लेके ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के।
0: अच्छा।
1: हां, उदे विच बंदा लेके लेबर लेके।
0: अच्छा, यानी कि गड्डीए च जाना?
1: गड्डीए

0: ये
1: चीज
0: होना
1: आना है
0: गड्डी से
1: ना,
0: लेके आना,
1: कने
0: टंकी
1: अच्छा
0: लेके या
1: ऑक्सीजन
0: अपना
1: भी
0: ऑक्सीजन
1: लगानी।
0: लगा के। हाँ जी
1: अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि जेलो तो हाँ, तो बीज लिया था इतने टाइम च से, तू तो पजाना ही पौना जिया, एक अद्धा दिन लेट हो जाए फिर ही।
0: नहीं नहीं कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
1: अच्छा
0: पर उस
1: टंकी
0: टाइम
1: जी रहा,
0: टंकी
1: ऑक्सीजन चाहिए थी है ना।
0: ऑक्सीजन चाहिए थी, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए थी, अगर
1: अच्छा
0: ऑक्सीजन नहीं मिले तो फिर नुकसान हो सकता।
1: अच्छा जी, गल करते हैं ना जड़ा मछली दा, जड़ा बीज है, कौन मछली दसी तो?
0: रेनबो, रेनबो ट्राउट।
1: ट्राउट है ना,
0: जी जी
1: सबसे महंगी मछली है।
0: हाँ जी, सबसे महंगी मछली।
1: अच्छा, तो क्या हिसाब दाम रहा पर किलो के हिसाब करना है?
0: अपने अपने हिसाब ने बिक जाए, 700 700 600 से स्टार्ट है, 600
1: अच्छा
0: 700।
1: है
0: हाँ
1: ना,
0: जी,
1: कर देखा ग्राइंड दी था, थोड़ा मेल जोल भाव होंदा, कोई आई है 10-20 घट भी लगाना पौंदे है ना,
0: लगाना पौंदी। हाँ जी हाँ जी, वो ही तो बोला
1: है
0: ना
1: ना,
0: कि
1: तो मछली बिकी जाती तो? हाँ जी,
0: बिकी जाती। हाँ जी सर, बिकी जाती।
1: अच्छा अमूमन कितना बड़ा बड़ा पीस हो जाता, यानी कि?
0: सर इस टाइम तो लगभग 500 ग्राम का पीस है, पाँच
1: अच्छा
0: सौ आधा
1: आधा किलो का है ना,
0: किलो। हाँ जी हाँ जी,
1: है ना। कने जियाँ अगर जलो तो हाँ, ये फार्म से मछली निकालनी है तो किया निकाल दे, जियाँ कोई जाली वगैरह
0: जाली
1: होंगी?
0: वगैरह बने। जी जाला
1: अच्छा
0: बने।
1: है ना,
0: जी जी
1: सर बिच डबोया करें
0: बिच
1: निकाल ले।
0: डबोया, उससे निकाल।
1: अच्छा गल करा करते हैं, हाँ जियाँ बीज की गल भी हुई, इन्हें जो जियाँ दाना क्या देंगे तो हाँ खाने ताइया
0: इन्हें
1: फीड?
0: दें सर फीड।
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मुल्ले ले आंदे होने
0: हाँ
1: ना।
0: जी मुल्ले लेके आंदे।
1: अच्छा जी, तो हाँ दस्या कि 4,000 तक जड़ा था अंदाजन पीस है फार्म च है ना,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो कितने टाइम दाना पाना है ने?
0: दाना तो प्रॉपर पाना पड़ता सर,
1: दिने का कितनी बारी पाते?
0: दो टाइम पाते,
1: अच्छा
0: सवेरे शामी।
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी
1: यानी कि कुछ किलो का हिसाब होता होना भी, इतना किलो पाना ही पौना है ना।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा फीड कौन फीड पाते, कोई फीड का ना कोई?
0: स्पेशल फीड होंगी इस टाइम,
1: अच्छा मछली तो यही होंगी
0: मछली
1: है
0: तो
1: ना।
0: यही होंगी। हाँ जी हाँ जी,
1: अच्छा
2: दो तीन प्रकार
0: अलग
2: दे
0: अलग
2: होंगी।
0: दो तीन प्रकार दी होंदी ना सर।
1: अच्छा कुदू ते ले आंदे फीड
0: सर
1: ए?
0: सर मैं तो पालमपुर ते लेके आया।
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ
1: यानी
0: जी,
1: कि जियां कदी गए तो 1-2 महीने तक इकट्ठी लिया
0: कट्ठी
1: है
0: ले आंदे। हाँ जी हाँ
1: ना,
0: जी हाँ
1: कहना वो जल्द खत्म हो गई तो फिर ही लिया है ना।
0: हाँ जी हाँ जी, लिया है या भिजवाई देंगे, वो तो मंगाई लेंगे। हाँ तो भेजी देंगे।
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो जियां पानी दी तो देखा इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं है ना, नेचुरल पानी जड़ा सा ओवदा
0: हाँ
1: ना,
0: जी
1: कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत तो नहीं होती जियां सर्दियों च या
0: सर,
1: गर्मियों च?
0: बरसात से थोड़ा फ्लड
1: अच्छा
0: वगैरह आते, उस वजह ने थोड़ा
1: हाँ,
0: स्पेशल
1: यानी
0: ध्यान
1: कि
0: रखना पड़ता।
1: बाहर थे कोई
0: हाँ जी
1: जियां
0: हाँ जी हाँ
1: है
0: जी,
1: ना।
0: इस टाइम नुकसान हो सकता अगर
1: अच्छा
0: नहीं संभालिए तो नुकसान हो सकता।
1: हाँ
0: हाँ जी हाँ जी,
1: रणजीत जी, जियां फार्म बिच कोई जियां बाहरले जियां जिसे बोलते हैं ना, जियां कोई पंछी हो या बाज हो या कोई जियां जिसे यहाँ बोलते हैं कि पानी वाला सांप डिन्ना जिसे बोलते हैं ना,
0: जी जी जी
1: सह तो नहीं फार्म च आए के नुकसान कर दे
0: सर,
1: कभी?
0: आज तक तो आया नहीं, वैसे देखा नहीं
1: अच्छा
0: मैं, महसूस होया नहीं अगे।
1: हाँ अच्छा,
0: जी
1: यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना।
0: हो सकता है वैसे, आ सकते जानवर तो पक्षी आई
1: हाँ
0: जाते के बिना
1: अच्छा,
0: तक
1: ये
0: होया नहीं।
1: अलावा जियाँ होर तो जो कोई परेशानी वगैरह तो नहीं आई कभी, जियाँ कोई बीमारी वगैरह लगी हो फार्म से कुछ ऐसा?
0: नहीं सर, आज तक तो नहीं आई।
1: अच्छा चलो,
0: मैं
1: यानी कि जिस यहाँ बोल सकते हैं ना
0: ठीक ही
1: कि
0: है सर,
1: भगवान
0: भगवान
1: दी
0: की
1: कृपा
0: कृपा।
1: करना, बधी फार्म चल रहा
0: ठीक
1: ना।
0: है हाँ जी, ठीक चले।
1: अच्छा तो फार्म बिच कल्ले करते काम संभाल लेंदे कल्ले
0: कल्ले
1: की
0: हाँ जी, कल्ले
1: है
0: संभाल
1: ना,
0: लेंगे।
1: गल करते ना जियाँ तुहां दा जल्लू ए उत्पादन तैयार हुई या फिर बेचना कुछ हुआ जाए के?
0: सर अपने कुछ आंदे रहते लोग इतने तो मिली ले लेंगे,
1: हाँ
0: लोकल टूरिस्ट वगैरह आते रहते घूमने, वो ले लेंगे
1: अच्छा
0: कुछ,
1: हाँ जी हाँ
0: या अदर कभी नीचे छापर चली जाते या धर्मशाला चलिए, कितने कभी
1: अच्छा
0: डिमांड हो तो फिर
1: हाँ जी, यानी कि
0: ले
1: बिकी आती है ना।
0: बिकी आती। हाँ जी
1: अच्छा गल करते हैं जियाँ फार्म दी साफ सफाई भी करना जरूरी होंगी
0: जरूर।
1: टैंकों की,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: किन्ने टाइम के बाद?
0: लगभग महीने डेढ़ महीने बाद साफ सफाई करना पड़ता।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: फिर
0: सर,
1: मछलियाँ देखी अदला बदली करनी, पहले
0: सर
1: एक कर
0: जाले
1: लेना?
0: ने शिफ्ट एक शॉप कर लिया पहले, उसके बाद शिफ्ट कर दी दूजी कर ली शिफ्ट। हाँ
1: अच्छा
0: जी,
1: अच्छा और देने कोई दवाई वगैरह जरूरत तो नहीं होती मछली
0: दवाई
1: की?
0: तो होंगी सर, मछली ये दवाई लगती है वैसे, पर अज तक मैं यूज नहीं की।
1: अच्छा
0: जी
1: यानी कि देखा है तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कने
0: नेचुरल सब कुछ
1: कुदरती
0: है,
1: है, तो
0: कुदरती
1: देखा
0: ही है।
1: कुदरत दा जड़ा साहब जिसके बोलते हैं पूरा आशीर्वाद है ना,
0: हाँ जी हाँ
1: इसी
0: जी हाँ जी,
1: पूरे ही ग्राएं पर कने देखा चौं तरफा कितनी हरियाली, कने पानी की तो कोई कमी नहीं है ना।
0: कमी नहीं है।
1: जड़ा कन्ने ही ये पानी हो वादा, ये कौन कौन खड्ड है ये
0: बराल
1: नाल?
0: खड्ड है जी।
1: बराल खड्ड है ना।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: अच्छा
0: बराल खड्ड
1: पानी
0: पानी
1: तो
0: की
1: इससे
0: सप्लाई,
1: कोई कमी नहीं है ना।
0: पानी की कमी नहीं है।
1: अच्छा तो ये इक्को ही फार्म है तो हाँ वाल की?
0: हाँ जी सर, एक कोई फार्म
1: अच्छा
0: है,
1: फिलहाल एक ही
0: फिलहाल
1: है।
0: एक कोई काम है, और नेक्स्ट तक सोचा था कि कुछ और बनाया।
1: अच्छा
0: जी
1: अच्छा इधर अलावा होर भी खेतीबाड़ी करते होने
0: हाँ
1: है
0: जी
1: ना?
0: हाँ जी, खेती बाड़ी
1: अच्छा
0: करते सारे,
1: बाकी पशु वगैरह भी
0: पशु
1: रखे?
0: भी रखे। हाँ जी हाँ जी, पशु भी
1: अच्छा
0: रखे,
1: जी
0: बगीचा भी रखे मेरा, सेब पलम भी है, नीम भी है।
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी,
1: अच्छा
0: सब
1: बगीचा भी है
0: हाँ
1: ना।
0: जी हाँ जी, छोटा
1: अच्छा
0: छोटा बगीचा
1: तो
0: है।
1: सेब कौन दे प्रजाति है सेब दिए?
0: 4 साल बाद लगना शुरू हुई है।
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी, गोल्डन कलर का सेब
1: अच्छा
0: है,
1: कुछ
0: अच्छा है
1: ले है
0: बड़े।
1: पौधे?
0: सर कुछ थोड़े विभाग दे थ्रू आए उस
1: हाँ
0: टाइम, थोड़े
1: एग्रीकल्चर वाले दे,
0: एग्रीकल्चर दे। हाँ
1: कृषि
0: जी,
1: विभाग दे है
0: कृषि
1: ना।
0: विभाग दे मिले। हाँ
1: अच्छा
0: जी हाँ जी,
1: सो की नाशपाती है ना?
0: नाशपाती है।
1: अच्छा, इस बार यह कदिया से बना उत्पादन?
0: इस बार तो ज्यादा नहीं रहा वैसे, पर फिर हाँ। भी लग गए ना कुछ।
1: अच्छा अच्छा, तो वहाँ कितनी पढ़ाई लिखाई की थी यो?
0: सर पढ़ाई तो ग्रेजुएशन।
1: अच्छा जी, दिखाई भी बड़ी खुशी की गल होंगी कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी।

0: जड़ा सा कोई ऐसा नहीं है, कने अपना कम है ना,
1: जी जी
0: कने मत सारे यहाँ जो किसान हैं बागवान हैं सह इन कम करने जो जुड़े होने अपनी आय जो अगे बढ़ा कर देने।
1: हाँ जी
0: जी रणजीत जी, अहां दी जड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है तिन्हें जो तो हाँ क्या संदेश देना चाहेंगे कि सह भी कि जो दे कम धंधे अपनाए कि अपना रोजगार चलाई पान।
1: सर भी यही सलाह है कि अपनी खेती बाड़ी,
0: हाँ जी
1: अपनी बागवानी,
0: हाँ
1: करना चाहिए बंदे अपने इनकम बढ़ाने ताई,
0: हाँ जी
1: इनकम सोर्स ताई कि अगे आके कम करना चाहिए था।
0: जी हाँ जी, हाँ जी
1: मेरी यही सलाह की,
0: हाँ
1: हर बंदा अपने हर चीज नेचुरल है,
0: हाँ जी
1: पानी मिलता,
0: हाँ
1: नेचुरल चीज है सब कुछ, हाँ ते सारे बंदे अपनी इनकम सोर्स बढ़ाने दे अपना,
0: मत्स्य
1: पालन विभाग लियो, चाहे थोड़ा हॉर्टिकल्चर कृषि एग्रीकल्चर विभाग लियो,
0: जी
1: उनकी बदौलत काफी सहयोग रहा है।
0: जी रणजीत जी, तो हाँ अपने ट्राउट मछली पालन दे अनुभव, अपने बागवानी दे अनुभव अहां कन्ने सांझा कीते, अपना कीमती समय तो हाँ अहां जो दित्ता, तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई किसान साथियों, किसान मित्र ने जेड़े अपने उन्नत किसान हैं इन कन्ने गलबात कीती, कन्ने दिखा मछली पालन च इन्हें अपना व्यवसाय दे रूप च अपनाया है, कन्ने खूब जड़ी आए ऐसा कमा करते हैं। किसान साथियों, खेतीबाड़ी हूँ सह टाइम नहीं रहा कि सिर्फ कणक कने धान बाही सड़े कने तिस कने ही जीवन यापन जड़ा सा किता, लेकिन अजकल नए नए उद्योग धंधे जड़े ने तिन्होंने भी तुसा अलग ते पैसा जड़ा सा कमाई सकते हैं, कने अपनी आय जो उन्नति करी सकते हैं। इस कने किसान मित्र जी अहां ये भी बोलना चाहेंगे भी अजकल बरसाती का मौसम है, किसान साथियों कई तरह के फलदार पौधे जड़े इनसे तो हाँ अपनी खेतीबाड़ी च पैदा करी सकदे, कने ये समय जड़ा है सै बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है जिस विच तो हाँ कोई भी फलदार पौधा अपनी अपनी जमीन च चाहते हैं, तो इस समय जड़ा सा बड़ा अच्छा लगे है। कने ब्लॉक ब्लॉक स्तर पर किसान मित्र जी दिखा कई तरह के फलदार पौधे जड़े सह अनुदान दे रूप च तो हाँ ले सकते हैं,
0: बिल्कुल हाँ
2: सस्ते दरों पर तो हाँ गलाइए पे ले सकते हैं, कने अपनी खेतीबाड़ी का हिस्सा तीसियों बनाई सकते हैं, है ना जी।
0: हाँ जी,
2: तो हाँ इस विच जियां कि कीवी है, अजकल नए नए हाँ बोलिए ना फल भी आवा करते,
0: हाँ जी
2: कने अच्छी पैदावार जी साढ़े इलाके विच दिया करते हैं, जियां जापानी फल भी है,
0: हाँ
2: कीवी है,
0: कने
2: एक ड्रैगन फ्रूट जो ला करते, तो ये अलग अलग किस्म जी सही है, कने हाड़े किसान जड़े से उगाई के इस विच आर्थिक उन्नति करा करते, तो अहां चाहेंगे कि हरेक किसान जड़ा सा इस वारी जियां अहां इस ट्याले ते नारा दिंदे हन हरेक बीड़ा पर एक पेड़,
0: बिल्कुल
2: तो हाँ अलग अलग अंबाइयां तो हाँ दिखा भी कई तरह दियां किस्म जड़ियां हन साढ़े हिमाचल विच मिलदियां हन, कुसी पड़ोसी है घरा अगर अच्छे किस्म का अंब लग गया तो तुसां तिस दी कलम लगाई सकदे, या फिर तुसां तिस दा कोआ अपने दवाई के तुसां तिस अंबे ते तू अपने तैयार करी सकदे, इन चीजां जरूर साढ़े किसान भाई ध्यान रखे, कने अपने अपनी खेतीबाड़ी च नए ते नए जड़े फलदार पौधे ने लगांगे।
0: हाँ दिखा इस कन्ने जियां तुसां औषधी पौधे भी लगाई सकदे ने ना
2: जी, बिल्कुल
0: हरड़ होई गई, भेड़ा होई गया, आंबला होई गया, कुल मिला के अहाँ ये बोल सकते हैं कि अहाँ बिच एक जड़ी सा जिसकी अहाँ बोलते हैं ना लगन होना चाहिए कि अहाँ पौधारोपण करना है,
2: बिल्कुल करना हाँ। करना ये तो किसाने का एक धंधा अहाँ बोली सकते हैं,
0: हाँ
2: तो इसी धंधे दिखा प्रकृति उन्नत करने ताई सांझो सारे सहयोग देना पौना, कने इस विच साढ़े देश दे प्रधानमंत्री भी साढ़े किसाने साथ दिया करते,
0: हाँ जी
2: दिखा एक मुहिम चली हुआ है एक पेड़ माँ के नाम दी,
0: हाँ जी
2: तो इस विच हरेक व्यक्ति जरा सा एक एक पेड़ लगा करते, कने इस वारी जी सा त्रिया हाँ बोल गए पे सतारे सा योजना चलिया है, कने स्कूलों विच भी ये अभियान जरा सा जोरा शोरा कने किता जा करता, तो हाँ अपने किसान साथियों ने भी आग्रह करके कि अपने अपने नाए का एक पेड़ जरा सा जरूर सारे अपने अपनी खेतीबाड़ी च लगान, कने तिस पेड़े की देखरेख भी जड़ी सा तिसियो बढ़वार भी तिस पेड़े की अच्छी होवे, कने तिस दा फल भी लैने की पूरी मतलब सेवा ऐसी होवे ताकि ये एक पेड़ माँ के नाम मुहिम जड़ी ऐसा सफल हो सके।
0: हाँ बिल्कुल जी, तो इसके बाद फिर ते लंबरदार जी सुनते हैं जड़ा सा एक लोक गीत है ना,
2: बिल्कुल

0: मित्र जी काचा चलिया पहाड़ा जो है हाँ। लोग गीत सुनने का जरा सा नजारा गया आई हाँ कने इस लोग गीत के बाद हूं हाँ अपने किसान साथियों दसी है भाई बरसात लगी हो है कने इस समय जरा एक तो अपने पशुधन की भी सेहत बनाने का समय है ना हाँ। उन देखा भाई चिड़नुमा त्यौहार हाँ उन्हीं मनाया है
1: जी।
0: दो चार दिन पहले ही हाँ। तो इं साढ़े

0: पुराने जड़े थे हर एक छोटी छोटी गल्ला है जड़ा सा खुशी है च बदलने दे तरीके दे
1: जी
0: ता अपने पशु हो जी आजकल मक्खी मच्छर हो या चीचड़ हो इना ते जरूर हाँ जी सुरक्षा जड़ी सा करनी है कने इस समय जड़ा सा पशुधन जो मतलब हरे चारे की व्यवस्था जड़ी है सै खूब हरा चारा होंदा है ताकि हाड़ा पशु जड़ा इस टाइम में अगर हाँ हरा चारे का इस्तेमाल करगे तो साड़ा भो बचता है ना जी तिस विच हाँ मतलब अनाज भी पाना पौंदा है ता तो भो खवांदे ने
1: हाँ जी
0: इस टाइम में जड़ा सा हरा चारा रलाई के तुहां थोड़ा थोड़ा भो बिच पाई के तो हाँ अपने मतलब बचत करी सकते हैं
1: बिल्कुल हाँ जी कहना दिखा भी बरसाती का यह मौसम है कन्नै इन्हां दिनें जेह्ड़ा असें तरह तरह दे जियां तुसें बोलिया कि पैह्लें असें त्यौहार मनाया ना
0: जी जी
1: त्यौहार आह्ली होर मते होने दिक्खा भी पकवान तरह तरह दे जेह्ड़े असें बनदे आ कहिंदे दिक्खा हुण जियां बेठियां आह्ले पत्तर जेह्ड़े असें खूब होए होए ना
0: बिल्कुल
1: कहिंदे दिक्खा हां जी किसान भैणां दिक्खा थोड़ी दियां छलियां जेह्ड़ियां असें बचाई के रखी लईआं होंदियां ना कि जेलू बेठी पानी है तां छलियां दा आटा भी जेह्ड़ा असें भ्याणा पौना है
0: ठीक लाया
1: हां
0: तबे दिक्खा पहले दे टाइम में कहिंदे हुण भी हां जो चाहिदा कि अपने खाने पीने च हां तिस च आहे बोलीए भई ताकत आली चीज रखिए ते इयां ना होवे भई अजकल तो हां दिखा करदे है न्यूडल कने चौमिन कने ब्रेड खा करदे सादी चीजें ते परहेज करा कने अपनी जड़ी देसी चीजें ने इन्हें खाने दा इस्तेमाल करा कने उनी गां गां हाड़े किसान साथियां जी बरसातड़ खीरे वगैरह कद्दू वगैरह ये लगाए हुए ने ये भी मतलब घरे दे ताजी चीज आलू सब्जी बनदी है तो हां दिखा भई दो फुलके ज्यादा खोंदे
1: घरे दी जड़ी से रंग रूप बनावटी का दिखने दा चा लगदा है
0: बिल्कुल तो ठीक लाया भई अजकल साढ़े किसान साथी हैं तो हाँ दिखा पे भिंडियां हुई हैं मतलब जड़ी भी सब्जियां तो हाँ फ्रास बीन है भिंडियां हैं या कद्दू की ये डानी है खूब लगा कर दे कने किसान साथियां कियां कियां बचाई के जड़ा है अपनी चाहे सा लफाफे चढ़ाई के चाहे सा कियां कियां बचाई के अपनी फसलां जड़ियां अपनी सब्जियां जड़ियां सब बचा दे कर दे कने खूब खा भी कर दे
1: जी
0: ता इस कने हुण दिखा पे साढ़े कार्यक्रम संपर्क करने का समय भी आई गया है अपने किसान साथियों दसीए भी इस कार्यक्रम च सांझे तकनीकी सहयोग दिता अंकित दिमान ने कने इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जतेंद्र पाल सिंह इसी कने ट्याले दे लंबरदार
1: कने किसान मित्र जो दिया अनुमति
0: अच्छा जी जय हिंद।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: एफएम बैंड 103.4
1: आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
3: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा डेंटल हेल्थ सेंटर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रौद्योगिकी का उपयोग जनहित में करने और रोजगार प्रदाता के रूप में पहचान बनाने का विद्यार्थियों से किया आह्वान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण क्षेत्र की चायली पंचायत व नगर निगम मजियाट में 16 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, केंद्र द्वारा प्रदेश को दी जा रही धनराशि का सदुपयोग नहीं कर पा रही सुक्खू सरकार, केंद्र को कोसने पर पूरा ध्यान। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित डेंटल कॉलेज का नाम राजीव गांधी डेंटल कॉलेज करने की घोषणा की है। शिमला में आज एओएमएसआई के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से डेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ जिला अस्पतालों में भी उन्नत तकनीक और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
1: हेल्थ में जब से हमारी सरकार आई है, हमने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने के दृष्टिकोण से आगे डेंटल हेल्थ के अलावा दूसरे जो हमारे डीएमई है, मेडिकल एजुकेशन है, उसके जो 75% पार्ट है उसमें हमने बहुत रिफॉर्म्स किए हैं, नियम चेंज किए हैं, रूल चेंज किया है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है और उस टेक्नोलॉजी को हमने लाया है जो एम्स में। पर कोई भी हेल्थ डेंटल हेल्थ के बगैर पूरी नहीं हो सकती है, तो डेंटल को भी मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी होती है।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विद्यार्थियों से प्रौद्योगिकी का उपयोग जनहित में करने और रोजगार प्रदाता के रूप में पहचान बनाने का आह्वान किया है। वे आज सोलन जिला के वाकनाघाट में निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राज्यपाल ने प्रदेश की समृद्ध औषधीय गुणवत्ता से युक्त जड़ी बूटियों और वनस्पतियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने पर भी बल दिया। उन्होंने सतत विकास पर बल देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रत्येक इंजीनियर और पेशेवर को अपने कार्यों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। राज्यपाल ने अनुसंधानकर्ताओं व युवा नवोन्मेषकों से पहाड़ी राज्यों की विशिष्ट चुनौतियों जैसे आपदा प्रबंधन, सतत कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के मेधावियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक व अन्य शैक्षणिक पुरस्कार प्रदान किए। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। वे आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की चायली पंचायत और नगर निगम मजियाट क्षेत्र में करीब 16,77,00,000 रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के अवसर पर बोल रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चायली खुर्द सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

0: और इसे पीएमजीएसवाई चरण चार के तहत लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। लोक निर्माण मंत्री ने टूटू रेलवे स्टेशन पर 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक वाहन पुल और 90 लाख रुपए से बनने वाली गड़ावक संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पुल के बनने से रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार केंद्र द्वारा प्रदेश को दी जा रही धनराशि का सदुपयोग नहीं कर रही है और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति न के बराबर है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं व केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार 90% तक की हिस्सेदारी दे रही है, बावजूद इसके प्रदेश सरकार केंद्र को श्रेय नहीं दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा समय में प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान केवल केंद्र सरकार को कोसने की तरफ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीजी की हर सीट के बदले केंद्र हिमाचल को 1.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस सहयोग का उल्लेख तक नहीं करती। जयराम ठाकुर ने जनता के सामने तथ्यों को रखने के बजाय केंद्र सरकार के योगदान को छिपाने के सुक्खू सरकार के प्रयास को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज से मॉनसून के सक्रिय होने से चंबा व कांगड़ा जिलों सहित कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। हालांकि प्रदेश के कई स्थानों पर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने आगामी 24 घंटों के दौरान किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि कल मंडी, कांगड़ा व शिमला जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 20 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
1: आज देर रात को मौसम कंडीशन है काफी सक्रिय होंगे पूरे प्रदेश में। इसके चलते आज 18 जुलाई से देर रात और 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। 20 और 21 को जो इंटेंसिटी है वो प्रदेश में काफी रहेगी। इसके चलते स्पेशली पिछले डिस्ट्रिक्ट में 20 और 21 तारीख को रेड अलर्ट जारी किया है। तो आज 18 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
0: इस बीच मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए कुल्लू, मंडी व सिरमौर जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने इस दौरान लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। संसद में ध्वनिमत से पारित महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार से शिमला में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान ने कहा कि 33% आरक्षण विधेयक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से संसद में पारित हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार अब इसमें परिसीमन का नया नियम फंसाकर महिलाओं को उनका अधिकार देने में देरी कर रही है।
2: हमारा ज्ञापन जो है 33% महिला आरक्षण विधेयक को एज इट इज लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है उनके राज्याध्यक्ष को ये ज्ञापन आज सौंपा है। जो विधेयक है ये 2023 में केंद्र की सरकार ने इसको पारित कर दिया है, लेकिन 3 वर्षों तक इस विधेयक को अभी तक लागू नहीं किया गया है। हमारे जो महिला संगठन है पूरे देश के वो ये मांग कर रहे हैं कि जो आगामी जो मानसून सत्र है उस मानसून सत्र में जो है जो परिसीमन की और जनगणना की जो शर्त है उस शर्त को जो है इस विधेयक से हटाया जाए और हटाने के बाद जो है इस विधेयक को एज इट इज जो है इसको लागू किया जाए।
0: सोलन जिला में जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कार्य लगातार जारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि जिन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1970 से पहले जन्मे व्यक्तियों के मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार शपथ पत्र और 2 गवाहों की आवश्यकता होती है।
3: सर्टिफिकेट को डिजिटलाइज किया जा रहा है। पुराने बर्थ सर्टिफिकेट हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं उनको डिजिटलाइज कर

0: शुरू किया है। नगर परिषद अध्यक्ष उपमा धीमान ने बताया कि अभियान के तहत सड़क किनारे पड़े मलबे और कूड़े के ढेर को हटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने और स्वच्छता अभियान में सहयोग देने का आग्रह किया है।
1: नाहन शहर समय में सबसे स्वच्छ शहर हुआ करता था, लेकिन आज जो नाहन है पूरा गंदगी से भर रखा है, तो जिसके लिए मैंने नगर परिषद ने एक प्रयास किया है, हमने आज से शुरुआत की है इसकी कि एकदम साफ सुथरा शहर को किया जाए और कमेटी के माध्यम से ये सारा जो तंत्र है आज इसमें लगा है। हर वर्ग महिला पुरुष बच्चे एनजीओ जो भी सोसाइटीज है काम करती है, मेरा उनसे सभी से निवेदन है कि हम सभी मिलकर अपने इस छोटी सी नगरी को जो कि जगन्नाथ भगवान जी की एक नगरी है इसको हम स्वच्छ करें, इसको हम सुंदर बनाएं और हम सभी इसी के लिए प्रयास।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा डेंटल हेल्थ सेंटर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रौद्योगिकी का उपयोग जनहित में करने और रोजगार प्रदाता के रूप में पहचान बनाने का विद्यार्थियों से किया आह्वान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण क्षेत्र की चायली पंचायत व नगर निगम मजाट में 16 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, केंद्र द्वारा प्रदेश को दी जा रही धनराशि का सदुपयोग नहीं कर पा रही सुक्खू सरकार, केंद्र को कोसने पर पूरा ध्यान। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना बसंतपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के रिक्त पद भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बाल विकास परियोजना बसंतपुर के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्र करोरी स्थित पंजोल वजीरा पनिहाना बझोल फ्रेंडा मटियोग तरौर कटुडू कडेची जुबड़धार कार्याल्टू ओडू कोट डायला झोलो सेवांग बगैन मुंगना सुनी एक में आंगनवाड़ी सहायिका पनेहल आंगनवाड़ी केंद्र हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने के लिए दिनांक 13 अगस्त 2026 को बाल विकास परियोजना सुन्नी के कार्यालय में सुबह 11 बजे उपमंडलाधिकारी सुन्नी की अध्यक्षता में साक्षात्कार लिए जाएंगे। संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों के सर्वेक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली महिला आवेदक सादे कागज पर सभी प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 4 अगस्त 2026 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी बसंतपुर स्थित सुन्नी के कार्यालय में अपना आवेदन जमा करवा सकती हैं। मानदेय आंगनवाड़ी सहायिका को सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर मानदेय प्रतिमाह देय होगा। पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार से हैं। उम्मीदवार केवल महिला ही हो और अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के संग्रहण क्षेत्र यानी फीडिंग एरिया की निवासी हो व उसका परिवार संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज परिवारों की सूची में शामिल हो तथा परिवार में उसका नाम भी दर्ज हो। अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम तिथि के दिन

0: 18 से 35 वर्ष के बीच में हो। अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार कार्यकारी दंडाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। रोजगार समाचार समाप्त हुए। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब रस। सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं कार्यक्रम सब रस में। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले तलत अजीज के युगल स्वरों में गाई ये गज़ल।

अभी आपने सुनी आशा भोसले तलत अजीज़ के युगल स्वरों में गाई ये गज़ल। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी जरूरी सूचना। श्रोताओं, इस रविवार दिनांक 19 जुलाई सन 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा उच्च रक्तचाप कारण और बचाव से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न। स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर कविता ठाकुर, मानव औषधि विशेषज्ञ एवं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शाहपुर जिला कांगड़ा से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 19 जुलाई सन 2026 समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिएगा 01892224391। फ़ोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 19 जुलाई सन 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे FM 103.4 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम सबरस में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुरेंद्र कौर की आवाज में ये गीत।

अभी आपने सुना सुरेंद्र कौर व साथियों की आवाज़ों में गाया ये सुहाग गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति नेहा कक्कड़ रोहन प्रीत सिंह के युगल स्वरों में।

0: करें।
1: अभी आपने सुना नेहा कक्कर, रोहन प्रीत सिंह व साथियों की आवाजों में ये पंजाबी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दलेर मेहंदी सुनिधि चौहान के युगल स्वरों में ये गीत।

अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं जस माने की आवाज में गाया ये पंजाबी गीत।

अभी आपने सुना जसमाने की आवाज़ में गाया ये पंजाबी गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

अभी आपने सुना सुनिधि चौहान व साथियों की आवाज़ों में गाया ये गीत। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति ये रही।

इसी के साथ हमारा आज का अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र सब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर व साथियों की आवाजों में गाया ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

अभी आपने सुना आनंद राज आनंद व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
3: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
4: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी बसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है।

0: है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
4: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
1: हुरमुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के

0: से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज वाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahma Yugam and

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमदर्शन कार्यक्रम, जो कि आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब अंदौरा सहित देश भर के 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 2022 से 2025 तक MIS के तहत खरीदे गए सेब के बकाया भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपए जारी। प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न। लोगों ने अभियान में निभाई सक्रिय भागीदारी। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, नशे के नेटवर्क को तोड़ने में पूरी तरह विफल रही राज्य सरकार, सत्ता के संरक्षण में नशा माफिया सक्रिय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर से वर्चुअल माध्यम से देश भर के 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें ऊना जिला का अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अंब अंदौरा स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने तलवाड़ा व मुकेरिया के बीच रेल ट्रैक के 27 किलोमीटर लंबे आखिरी सेक्शन को पूरा करने के कार्य की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जालंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की NDA सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक परिवार, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्ग का, सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्राप्त करें और नागरिक देवोभव की भावना सरकार के कार्यों में परिलक्षित होती है।
1: हम नागरिक देवोभव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवोभव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री की पट्टिकाओं का अनावरण किया, जहां वे प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से हिमाचल की प्रमुख रेल परियोजना को विशेष वित्तीय सहयोग प्रदान करने और भानुपल्ली बिलासपुर, चंडीगढ़ बद्दी व ऊना हमीरपुर रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का आग्रह किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का आधुनिक स्वरूप ऊना जिला के लिए गर्व का विषय है और उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और परफॉर्मेंस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा रैंकिंग लगातार बेहतर हुई है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने दावा किया कि पिछले 3.5 वर्षों में शिक्षा विभाग ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। भाजपा द्वारा कुछ परियोजनाओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास पूरी प्रक्रिया के तहत किया गया है।
2: 3.5-4 वर्षों में हमारे शिक्षा विभाग में बहुत सी उपलब्धियां हमारे विभाग के द्वारा हुई है। आज जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे जो आपके सर्वेक्षण होते हैं, चाहे आप NAS की बात करो, जो जयराम जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान जो मुझे आज परामर्श दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वो 21वें स्थान पे थे। आज निरंतर जो हमारी सरकार ने प्रयास किए, आज हम टॉप 5 स्टेट्स में हमारी रैंकिंग है। हमारी चाहे NAS की बात हो, चाहे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात हो, वहां पर 18वें स्थान पे थे। वहां पर भी अगर हम राज्यों की बात करेंगे, हम टॉप 3 स्टेट्स में हमें इसमें स्थान मिला है। 100% लिटरेसी हुई, आज केरला के साथ हमारी गिनती होती है।
0: रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा यदि श्वेत पत्र जारी करने की बात करती है तो उसे केंद्र की NDA सरकार के फैसलों पर भी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
2: पत्र तो जारी करें, लेकिन साथ में भाजपा के हमारे मित्र वो भी श्वेत पत्र जारी करें जो वर्तमान की आपकी NDA सरकार के कार्यकाल के दौरान हम जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कटौती की गई, जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स में कैप लगा दिया गया, GST कंपनसेशन पे विराम लगा दिया गया, इसी तरह से तो जो लोन लिमिट थी उसमें भी काफी कटौती की गई है। और अगर आप तुलना करेंगे जयराम जी के कार्यकाल के दौरान की और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान की, लगभग कोई प्रतिवर्ष आपका कोई 10-12 हजार करोड़ का अंतर आपको देखने को मिलेगा।
0: राज्य सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना MIS के तहत वर्ष 2022 से 2025 तक खरीदे गए सेबों के बकाया का भुगतान प्रत्यक्ष

0: लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सेब बागवानों के खातों में कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कॉटन प्रणाली लागू की है ताकि बागवानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि MIS के तहत 30 बैग तक सेब बेचने वाले सेब उत्पादकों को भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जबकि 100 बैग या उससे अधिक सेब उत्पादकों को भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 45 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वर्तमान सीजन में MIS के तहत सेब खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बागवानी मंडी मध्यस्थता योजना की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी शुभारम्भ किया।
0: प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 5-day week लागू करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर 5-day week लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई है। प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मियां ने बताया कि सप्ताह में 2 दिन अवकाश मिलने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, तनाव कम होगा, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और सरकार को सालाना करीब 100 करोड़ रुपए की बचत भी होगी।
2: 5-day week जो एक पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की मांग है और विभिन्न एसोसिएशनों ने हमारे को अवगत करवाया कि हमें जो है 5-day week के लिए फोकस करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया और साथ ही साथ ये कहा है कि इसको हम स्टडी करके और एग्जामिन करके जो है इसको बड़ी जल्द लागू करेंगे। 5-day week में एक तो सरकार का काफी पैसा बचेगा, कम से कम भी एक साल का 100 करोड़ के करीब जो है पैसे की बचत होगी।
0: हिमाचल प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का कार्य 15 जुलाई को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 16 जून से शुरू हुए इस अभियान में डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अभूतपूर्व सटीकता और गति से डेटा संकलन किया गया। इस चरण की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वगणना विकल्प की सफलता रही, जिसमें प्रदेश के जागरूक नागरिकों ने डिजिटल सुविधा का लाभ उठाते हुए स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर राष्ट्रीय जनगणना अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। जनगणना निदेशालय ने इस महाअभियान की सफलता का श्रेय प्रशासनिक तंत्र और फील्ड स्टाफ को दिया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बावजूद प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने पूरी निष्ठा से घर घर जाकर डेटा एकत्र किया। स्टेट ओपन स्कूल के तहत इस वर्ष सितंबर में आयोजित होने वाली कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 20 जुलाई तक प्रवेश फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थी इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में नशा माफिया फल फूल रहा है और राज्य सरकार नशे के नेटवर्क को तोड़ने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। शिमला से जारी एक बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नशे की स्थिति भयावह होती जा रही है और गांव-गांव तक नशा पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार की कार्रवाई केवल मात्र दिखावा ही साबित हो रही है। इस बीच जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2019 से 2022 तक की मांगी गई जानकारी के जवाब में ये खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित जवाब में माना है कि सरकारी अस्पतालों में इस अवधि के दौरान पुरुष मरीजों की हिस्टेरेक्टोमी संबंधी कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी योजना शुरू करने में नाकाम रहे और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को घोटाले का झूठा नाम देकर कीचड़ उछाल रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2,28,00,000 रुपए की अवैध चल व अचल संपत्ति जब्त की है। शिमला पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई कोटखाई व बालूगंज थाने में NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों पर की गई है। ASP शिमला मेहर पंवर ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 6 मामलों में 24 आरोपियों से 4,11,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा इस साल

0: इसमें केवल शिमला जिला पुलिस द्वारा की गई सबसे बड़ी फाइनेंशियल कार्रवाई है।
1: नशा तस्करी के खिलाफ जिला शिमला पुलिस द्वारा एक ऑलराउंड अभियान छेड़ा गया है। वर्ष 2026 में जिला पुलिस शिमला द्वारा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब तक कुल 4 करोड़ 11 लाख की संपत्ति 6 केसों में 24 आरोपियों की जब्त की जा चुकी है, जो इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला पुलिस के द्वारा किए गए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में सबसे अधिक है। जिला शिमला पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी ही नहीं की जाएगी, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें भी विधि अनुसार जब्त किया जाएगा।
0: इस बीच भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत नशा मुक्त भारत 2029 का रोडमैप केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि देश की युवा पीढ़ी को नशे के अभिशाप से बचाने का राष्ट्रीय संकल्प है। राणा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये अभियान पूरे देश के लिए तैयार किया है, जो ये दर्शाता है कि सरकार युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र की इस नीति को पूरी गंभीरता के साथ अपनाना चाहिए और उन्होंने नशा मुक्त भारत के रोडमैप को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का सुझाव भी दिया।
2: ये जो रोड मैप तैयार किया गया है, जहां सभी राज्यों को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार भी इसको गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट करे। और ये नशा जो है, ये हमारे देश के नौजवानों पर सीधा अटैक है। तो ये जो नशा है, ये आए दिन परिवारों को उजाड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार का ये अभियान है, ये लड़ाई केवल कानून के बल पर नहीं, बल्कि समाज, परिवार, शिक्षा संस्थान और सरकारों की संयुक्त भागीदारी से ही जीती जा सकती। भारतीय जनता पार्टी ये जो निर्णायक लड़ाई है नशे के खिलाफ, इसको लड़ने के लिए बिल्कुल संयुक्त रूप से तैयार है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की या किसी विशेष दल की ना रहकर, ये सभी राजनीतिक दल हो, सभी सामाजिक संगठन हो, ये सबको लड़ना पड़ेगी।
0: सोलन जिला के खील, जसली और आसपास के कुछ गांवों में अवैध निर्माण, हिल कटिंग और बेनामी जमीनों के सौदों के खिलाफ उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। एक गैर सरकारी संस्था द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वन विभाग को 1 सप्ताह के भीतर जांच कर स्थिति की रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता प्रिय सकलानी ने कोर्ट में बताया कि इन क्षेत्रों में धारा 118 का उल्लंघन कर हिमाचल की जमीनें बेची गई है। उन्होंने कहा कि बाहरी बिल्डरों ने नियमों को ताक पर रखकर यहां बहुमंजिला इमारतें बना दी हैं, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
3: जो चीजें सामने आई और जो हमने एक्सप्लोर करी और बहुत उसमें मेहनत करके पता लगाया कि एक्चुअली ये क्या है, यहाँ प्रशासन ने इस गांव को एक आसपास की जगहों पे आंखें क्यों बंद की हुई हैं? पंचायत ने 5 साल वहां पे कदम नहीं रखे। जो काम करती थी एनजीओ करती थी, जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं वो सारी बेनामी सौदे हैं। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उस कंस्ट्रक्शन में इतनी धांधली है, कोई स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नहीं, कोई सॉयल सर्टिफिकेट नहीं, कोई टीसीपी परमिशन नहीं। 3-3 बिस्वे के लैंड है और उसपे 9-9 मंजिले बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें हमें पता चला ये सारे ही 118 की वायलेशन, बेनामी सौदे और नोटराइज डीड्स पे बिके हुए हैं।
0: इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

0: अभी आप सुन रहे हैं।
1: अभी आपने सुना हिमदर्शन कार्यक्रम, जो कि आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया गया FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब चित्र भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: के के डोले की लो।
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार अभिनेता गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक निर्माता लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिकाओं

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: मैं तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, लीमू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: विद्या की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साहित्य सघन विचार करें।
4: क्या खड़ा होगा यहाँ? भाग यहाँ से।
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुईं। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक। दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदाबाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी।

0: इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है? उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष ने अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने? बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, नहीं तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदा सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
2: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
3: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
4: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया

पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना वीडू और इधू नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थीं। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथनई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा। आउटडोर में ना अच्छी लाइटिंग होती है, ना आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की

0: सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, बीएचयू कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड यूएसए से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। Born into distinguished music gharana of Varanasi, Devvrat Mishra received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaro, Sankat Mochan Sangeet Samaro, Saptak Sangeet Samaro, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries, such as USA, Canada, Spain, France, Italy, and Germany. Devvrat Mishra has been honored with the National Youth Festival Award, Swarmani Alankaran, Kashi Ratn, Sangeet Shikhar, BHU Kaustubh Samman, German Best Jazz Critic Award, and the World Music Visionary Award, USA. In tonight's program, accompanying him on tabla is Prashant Mishra, an A-grade artist of Akashvani. Devvrat Mishra is beginning his sitar recital tonight with Raag Jog, Vilambit and Dhrutgat set to Teen Taal.

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विद धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाई देवव्रत मिश्रा इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। अकंपनीइंग हिम ऑन तबला वॉज प्रशांत मिश्रा। अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी वाराणसी, दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
3: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
4: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
3: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातात्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
5: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल

0: को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।